सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर।

आज संगर है पूरन होए हमारी आशा तौर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तार यह है।

निरपचानन जीती ते कुंचर असुला सब पर कृपा दृष्टि कर कुला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने कट कट के पट पट की जाने जब युद्ध कर करा कर तारा प्रजा तर्त तब देहे अपारा जब आकर्क करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ जेते बदन शीर्ष सब तारे आप आपनी बूझ उचारे तुम सब ही ते रहत निरालम जानत बेद भेद अरियालम।

लिखा छोड़ अलिख है छूट है, हम निर्गुण ले हो उबारी, सद बख्शिंद सदा मेहरबाना, सबना दे आधारी।

चिर भयो दर्शन देखे, सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ, श्लोक महला तीजा, बाबीहा गुणवंती महल पाया।

अंत बेली हुए भगवान पौड़ी आपे जगत उपाय कै गुण अवगुण करे विचार त्रै

गुण छोड़ अवगुण कमाव दे, दरगह हो हे खुआर। जुए जन्म तिनि हारिया, कित आई संसार। सच्चे शब्द मन मारिया, अहनिस नाम प्यार। जिनी पुरखी उर तारिया,

वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मान योग साहिब सतगुरु गुरु गरीब नवाज धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब कृपालु सतगुरु जी दी पाक पवित्र हजूरी अंदर सुभायमान होए बैठी गुरु रूप साध संगत जी, आप जी वडभागी हो जो शामा दे दीवान दी हाजरी भावना शरदा सहित पर रहे हो। अमृतमई गुरबाणी दा कीर्तन सत्कारयोग भाई साहब भाई ओंकार सिंह जी अते उन्हां दे जत्थे पासों आप जीआं ने सरवण कीता है। समा होया है अमृत बाणी दी विचार दा कथा दा जो नितां प्रति साहिब सतगुरु धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दी अमृत बाणी मलार की वार दी आपां कथा विचार सरवण कर रहे हां। अज 13वीं पौड़ी अते उस दे नाल दो श्लोक जो तीसरे गुरदेव जी दे हन आप जी ने सरवण कीते ने, इना पावन श्लोकां दी अते पौड़ी दी आपां विचार अज दे दीवाना विच करनी है। पिछले प्रकरण विच सतगुरु दतार पिता जी जिग्यासु उसकी बेहबलता उसकी तड़फ दी गल करदे हन बबीहे दीआं उदाहरणां दे के, वाहिगुरु दी रहमत बख्शिश किरपा दी गल करदे हन मीह दा कणिया दा बदल दा हवाला दे करके। अज धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने इन्हां दो श्लोकां विच फिर बबीहे दी गल कीती है, पर अजे वचन कीते ने भी ए भाई बबीहे तू उस जीव रूपी स्त्री वर्गा बन जा, उस कामण वर्गा बन जा जिहड़ी अपने साईं दे अपने वाहिगुरु दे अपने परमेश्वर दे अपने प्यारे दे गुण गांदी है, गुणा राही जिन्हों खुशी मिलती है। जे तू उदा संग प्राप्त करना चाहना है जीव आत्मा, अज बबीहे नूं जीव आत्मा दे रूप विच पहला भी जीव आत्मा दे रूप विच ही सतगुरु दतार जी ने रहमतां कीतियां, पर अज पहला बबीहे दियां पुकारां दी गल जो उन्हूं सिख्या दित्ती है, अज उन्हूं एक तागीद कीती है भी किवें तूं तेरी ये पुकार किवें सुनी जा सकती है, किवें नजदीकता मिल सकती है, तेरी पुकार किवें चुप हो सकती है जे तू अंदरों उहदे गुणां नूं गाण लग जाए गुणां दा विसार करन लग जाए। ते जे तू औगण है तेरे विच वाहिगुरु नाल कोई अंदरों प्रीत नहीं फिर तेरा गावया तेरा बोलिया थाई नहीं पैना। ये सतगुरु दतार जी ने श्लोकां विच कृपा कीती है ते पौड़ी दा संखेप भाव गुरुदेव जी ने दर्शाया है कि वह अकाल पुरख वाहिगुरु ने यह सारा जगत जिवें उहदी माया है त्रैगुणी माया दे नाल बनाया है, आप ही खेडां खेड रहा है संसार दीआं खेडां विच परस्पर विरोध रखिया होया परमात्मा ने, कोई बाजी

तू साजन संगी प्रभ मेरा, काहे जी डराही। तुझ बिन अवर नाही मैं दूजा, तू मेरे मन माही। होवे सिफत कसम दी, नूर अरसों कुरसों चटी है, तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटी है।

एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कह गुरु नानक लई ध्याए। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरों श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिस रिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया कारणों निध आवै धाए। सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह। गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी। हे निमाणियां दे मान सच्चे पिता श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, आप जी ने मेहरां कीतियां ने दाता जी अमृत वेले तो लै करके इस वेले तक आप जिया ने अपने सिंघासन ते प्रकाशमान हो करके संगतां नूं दर्शन दीदार बख्शिश कीते। आप जी का कोटि कोटान शुकराना धनवाद है सच्चे पातशाह जी। आप जी दे भाणे अंदर चार पैर दिवस सुख शांति नाल बतीत होया। इस वेले रात्रि दे दीवाना की समाप्ति हुई है। आप जी दे सुख आसन की सेवा हुई है। सोहला साहिब जी दे पाठ किए ने। आप जी दे दर घर दे टहलियां पासों समुचिया सेवावां निभाउंदियां होईयां फुल्लां बख्श देणियां जी। आप जी कृपा करो अपने सुख आसन स्थाना विखे चल के विराजमान होवो। रात सुख शांति नाल बतीत करनी। अमृत वेले फिर संगतां नूं दर्शन दे दारे बख्शिश करने जी। सही प्यारे मिलने जिन्हां मिलिया तेरा नाम चिते आवे। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की।

अष्टपदी सिमरों सिमर सिमर सुख पावों कल कलेश तन माहि मिटावों सिमरों जास विसंबर एक नाम जपता गंत अनिक वेद प्राण सिमरत सुदाक्यर किने राम नाम एक आख्यर किनका एक जिस जीव सावै ताकि महिमा गनी न आवै काकी एक दर्श तुहारू नानकुन संग मुहे उदारू सुख मनी सुखमृत प्रभ नाम भक्त जना कै मन विश्राम रहाओ प्रभ कै सिमरन गर्व न बसै प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै प्रभ कै सिमरन काल पर हरै प्रभ कै सिमरन दुश्मन तरै प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागै प्रभ कै सिमरन अन दिन जागै प्रभ कै सिमरन भौ न ब्यापै प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै प्रभ का सिमरन साध कै संग सर्व निदान नानक हर रंग प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत्बुद्ध प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा प्रभ कै सिमरन बिनसै दूजा प्रभ कै सिमरन तीर्थ स्नानी प्रभ कै सिमरन दरगह मानी प्रभ कै सिमरन होए सुफला प्रभ कै सिमरन सुफल फला से सिमरै जिन आप सिमराए नानक ताकै लागो पाए प्रभ का सिमरन सब ते ऊचा प्रभ कै सिमरन उतरे मूचा प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै प्रभ कै सिमरन सब किछ सुझै प्रभ कै सिमरन नाहीं जम त्रासा प्रभ कै सिमरन पूर्ण आसा प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए अमृत नामृत माहि समाए प्रभ जी बसै साध की रसना नानक जन का दर्शन दसना प्रभु को सिमरै से तनवंते प्रभु को सिमरै से पतवंते प्रभु को सिमरै से जन परवान प्रभु को सिमरै से पुरख प्रधान प्रभु को सिमरै से बेमोहताजी प्रभु को सिमरै से सर्व के राजे प्रभु को सिमरै से सुखवासी प्रभु को सिमरै सदा विनाशी सिमरन ते लागे जिन आप दयाला नानक जन की मंगै रवाला प्रभु को सिमरै से पर उपकारी प्रभु को सिमरै तिन सद बलिहारी प्रभु को सिमरै से मुख सुहावे प्रभु को सिमरै तिन सुख बिहावै प्रभु को सिमरै तिन आत्म जीता प्रभु को सिमरै तिन निर्मल रीता प्रभु को सिमरै तिन अनंत कनेरे प्रभु को सिमरै बसै हर नेरे संत कृपा ते अंदिन जाग नानक सिमरन पूरै भाग प्रभु कै सिमरन कारज पूरे प्रभु कै सिमरन कबहु न झूरे प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी प्रभु कै सिमरन सह समानी प्रभु कै सिमरन निचल्यासनम प्रभ कै सिमरन कमल विगासन प्रभ कै सिमरन अनहद चुनका हारु सुख प्रभ सिमरन कांत न पार सिमरै से जन जिनको ब्रह्मया नानक तिन जन सरणी पाया हर सिमरन कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लग भेद उपाय हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते हर सिमरन नीचों कुंट जाते हर सिमरन धारी सब धरना सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरन के सगल अकारा हर सिमरन में आप निरंकारा कर कृपा जिसे आप बजाया नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया सलोक दीन दर्द दुख भंजना कट कट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रसाद अष्टपदी जय मात पिता सुत मीत न पाई मनुहा नाम तेरे संग सहाई जय महा भयान दूत जम दलै तह केवल नाम संग तेरे चलै जय मुश्किल हो वै तुभारी हर को नाम किन माए उधारी अनक पुनः चरण करत नहीं तरै हर को नाम कोट पाप पर हरै गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख कनेरे सगल सृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत हुए सुखिया लाख करोरी बंधन परै हर का नाम जपत निष्ठरै अनिक माया रंग तिक न बुझावै हर का नाम जपत आघावै जे मार्ग जात केला तै हर नाम संगोत सुहेला

कोई। सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया सा संग दुर्मत मन हिरिया। सगल उद्यम में उद्यम भला हर का नाम जपो जी सदा सगल बानी में अमृत बानी हर को जस सुन सुन बकानी सगल तान ते उत्तम था नानक जी कट वसै हर नाम। श्लोक निर्गुण यार एने सो प्रभ सदा संभालो जिनकी अत चीत रख नानक निभि नाल अष्टपदी रमैया के गुण चीत पुरानी कवन मूल ते कवन दृष्टानी जिन तो सासवार सी गारिया गर भगन में जिन्हें उबारिया बार व्यवस्था तुझे प्यार है दूध पार जोबन भोजन सुख सूद बिरद पयाओ पर साख सैन मुख पयाओ बैठ को दैन एहो निर्गुण गुण कछु न भूजे बख्श लेहो तो नानक सीजे। जे प्रसाद रूप पर सुख बसै सुत प्रात मीत बनता सुंगा सह जे प्रसाद पीवे शीतल जला सुखदाई पवन पाव कमुला जे प्रसाद भोगे सब रसा सगल समग्री संसाथ बसा दीने हस्त पाव कर नित रसना तिसै त्यागवर संगरचना से दुख मूढ़ व्यापे नानक काड लिहो पर व्यापे आदंत जो रख नार तिस्यों प्रीत न करे गुवार। जाकी सेवा नव नित पावै ता सिमूड़ा मन नहीं लावै जो ठाकुर ससदा हजूरे ता को अंदा जानत दूरे जाकी टैल पावै दर गैमान तिसे विसारै मुगदै जान सदा सदै भुलन हार नानक रखनहार अपार रतन त्या कौड़ी संग रचै सा छोट झूठ संग मचै जो छड़ना सो अस्थिर कर मानै जो होवन सो दूर परानै छोड़ जाए किसका श्रम करे संग सहाई किस पर हरे चंदन लेप उतारे तो ही गर्द प्रीत भस्म संग होए अंधकूप में पथ विकराल नानक काट लिहो प्रभ दयाल करतूत पशु की मान सुजात लोक पचारा करे दिन रात। बाहर बेगंतर मल माया छिप सुनाए कछ करे छिपाया बार ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्यापै लोप स्वान अंतर अग्न बार तुम स्वाहा काल पाथर कैसे तरह था जा के अंतर बसै प्रभे आप नानक तेजन सह सुमा सुन अंधा कैसे मार्ग पावे कर गहले हो कोड़ निभावे कहाँ बुझारत बूझे डोरा निष्कहिये तो समझे पूरा कहाँ विष्णु पद गावे गुंग जतन करे तो फिर सुर भांग कह पिंगल पर्वत पर पवन नहीं हो तू हाँ उस गवन करतार करुणा में दीन बेनती करे नानक तुमरी कृपा तरे संग सहाय सुहावे न चीत जो बैराई ता सुप्रीत। बलुआ के ग्रह पितर बसे अनद केल माया रंग रसे दृढ़ कर्मा न मने प्रतीत काल नया वे मूडे चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महालोभ द्रोह याहु जुगत बिहानी कई जन्म नानक राख लिहो अपन कर कर्म तू ठाकुर तुम पे अरदास जियो पिंड सब तेरी दास माद पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा में सुख कनेरे कोई न जाने तुमरा अंत उचे ते उचा भगवंत सगल समग्री तुमरै सूत्र धारी तुम ते हुए सुआग्याकारी तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास दा कुर्बानी। श्लोक देन हार प्रभ छोट कै लग हयान सुआए नानक न सी जई बिन नावे पत जाय अष्टपदी दस बस्तूले पाछे पावे एक बस्त कारण बिखोट गवावे एक भी न दे दस भी हिरले तो मूड़ा कौ कहा करे जिष्ठा कुरस्यो नाही चारा ता को की जय सद नमस्कार आजा के मन लागा प्रभ मीठा सर्व सोखता हु मन उठा जिस जने अपना हुक्म नाया सर्व थोक नानक तिन पाया गंध साहु अपनी देरास खात पीत पर तैन दुलास अपनी अमान कछ भौर साहु ले अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीताप ही खोवे बहुर उसका विश्वास न होवे जिसकी बस्ती से आज्ञा रखे प्रभ की आज्ञा मान्य मत है उसते चौगन करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल अनिक पांत माया के हेत सर पर होवत जान अनेत बिर की छाया स्यो रंग लावे ओ बिन सैव मन पछतावे जो दिसे सो चालन हार लपट रहते अंध अंधार बटाऊ स्यो जो लावे नेहिता को हाथ नयावे के ही मन हर के नाम की प्री सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाई
मिथ्या तान तान कुटम सुबाया मिथ्या होम मैं ममता माया मिथ्या राजोवन तन मालु मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्ती सुभस्त्रा मिथ्या रंग संग माया फेक हस्ता मिथ्या ध्रुव मोह अभिमान मिथ्या पशुपर कर्त गुमान अस्त्र भगत साध की शरण नानक जप जप जीवे हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुन है मिथ्या हस्त पर दर्भ को हिर है मिथ्या नेत्र पेकत पर त्रै रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर विकार को ताव है मिथ्या मन पर लोभ लुभाव है मिथ्या तानी पर उपकारा मिथ्या बात लेत विकारा बिन भूजे मिथ्या सब भय सफल दे नानक हर हर नाम लय बिरथी साकत की आर जा साच बिना कहूत सूचा बिरथा नाम बिना तन अंध मुखावता कह दुर्गंध बिन सिमरन दिन रैन बृथा बिहाये मीघ बिना जो खेती जाए गोबिंद भजन बिन बृथे सब कामु जो कृपण के निरार्थ दाम धन धन ते जन जे कट बस्यो हर नाओ नानक ताकै बल बल जाओ रहत अवर कछवर कमावत मन निप्रीत मुखो गंडलावत जन नहार प्रभु पर बीन बाहर भेख न काहु भीन अवर उपदेशय आप न करे आवत जावत जन में मरै जिसके अंतर बसै निरंकारु तिसकी सीख तरै संसार जो तुम पाने तिन प्रभु जाता नानक कुंजन चरण पराता करूं बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया या पह माने या पह आपाप करत नबेरा किसै दूर जनावत किसै बजावत नेरा उपाव सियान सगल ते रहत सब के जाने आत्म की रहत जिस पावै तिसले लड़ लाए थान तनंत रहा समाए सो सेवक जिस कृपा करी निमक निमक जप नानक हरी श्लोक काम क्रोध अर लोभ मोह बिनस जाए अहंग मेव नानक शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदि जे प्रसाद छत्ति ही अमृत खाहे तिस ठाकुर को रख मन माहे जे प्रसाद सुगंधत न लावै तिसको सिमृत परम गत पावै जे प्रसाद बसै सुख मंदर तिसै त्याय सदा मने अंदर जे प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पैर सिमरो तिस रसना जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई त्यागुण जोग जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावै तिसे त्याग तवर लुभावै जे प्रसाद सुख से सोई जय मनाठ पैरता का जस गावी जय जे प्रसाद तु सब को मान मुक्ता को जस रसन बकान जे प्रसाद तिरु रहता धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म प्रभ चीज पुत्र कै मान पावै नानक पत सेती कर जावै जे प्रसाद आरो कंचन देही लिवलावो तिस राम सुनेही जे प्रसाद तिरा उल्ला रहत मन सुख पावै हारो हर जस कह तू जे प्रसाद तिर सगल छिद्र ढाकी मन सरणी पर ठाकुर प्रभुता कै जे प्रसाद तुझको न पहुँचै मन साथ साथ सिमरो प्रभु उचे जे प्रसाद पाई दुर्लभ देहे नानक ताकी भगत करे जे प्रसाद अपूखन पहरी जय मन ते सिमरत क्यों आलस की जय जे प्रसाद अस्वहस्त सवारी मन तिस प्रभु को कबू न बिसारी जे प्रसाद बाग मिलक तना राग रोय प्रभ अपने मना जिन तेरी मन बंत बनाई उठत बैठ सत तिसै त्याई जो एक अलख इहा उहा नानक तेरी रखै जे प्रसाद करै पुन बहुदान मन आठ पैर कर तिसका ध्यान जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभ को साथ साथ चितारी जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरो सदा अनूप जे प्रसाद तेरी निकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जे प्रसाद तेरी पत रहे गुरु प्रसाद नानक जस कह जे प्रसाद सुने करन नाद जे प्रसाद पिखे बिस्माद जे प्रसाद बोले अमृत रसना जे प्रसाद सुख सह जे बसना जे प्रसाद हस्त कर चले जे प्रसाद संपूर्ण फलै जे प्रसाद परम गत पावै जे प्रसाद सुख सह समावै सब प्रभु त्याग वरकत लागो गुरु प्रसाद नानक मन जागो जे प्रसाद तुम प्रगट संसार
तिस प्रभु को मूल न मनो विसार जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूर्तता को जाप जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसे जान मन सदा जूरे जे प्रसाद तू पावें साच रे मन मेरे तूता स्योरा जे प्रसाद सबकी गत होए नानक जाप जपै जप सोए आप जपाए जपै सो नाओ आप गावाए सो हर गुण गाओ प्रभु कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास प्रभु सो प्रसन्न बसै मन सोए प्रभु दया ते मतूतम होए सर्व निदान प्रभु तेरी माया पू कछु न किन्हु लया जित जित लावो तित लगै हर नाथ नान किनकै कछु न हाथ श्लोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कह सुमुखता होए सुन मीता नानक बिनवंता साजना की चर्ज कथा अष्टपदी साधक संग मुखु जल होत साध संगमल सगली खोत साधक संग मुटै विमानु साधक संग प्रगटै सुज्ञान साधक संग बुझै प्रभु नेरा साध संग सब होत नबेरा साधक संग पाए नाम रतन साधक संग एक ऊपर जतन साध की महिमा वरने कौन प्राणी नानक साध की शोभा ब्रह्मा ही समानी साध के संग गोचर मिले साध के संग सदा प्रफुल्ले साध के संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग सब की रेन साध के संग मनोहर बहन साध के संग न कत हुंता वै साध संग स्थित मन पावे साध के संग माया ते पेन साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न सासंग दुश्मन समीत साधु कै संग वहां पुनीत सासंग किस्यो नहीं बैरु साधक संग न बीगा पैरु साधक संग नाही को मंदा सासंग जाने परमानंदा साधक संग नाही होता आप साधक संग तजै सव्याप आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बने आई साधक संग न कब होता वै साधक संग सदा सुख पावै साध संग बस्तगो चरल है साधु कै संग अजार सह साध के संग बसै तानु चै साधु कै संग महल पहुँचै साध के संग दृढ़ सब धर्मु साध के संग केवल पार ब्रह्मु साध के संग पाए नाम निधानु नानक साधु कै कुर्बान साध के संग सब कुल उधार है साध संग साजन बीच कुटुम निस्तार है साधु कै संग सो तन पावै जिस तन ते सब को वरसावै साध संग धर्म राय करे सेवा साध के संग शोभा सुर देवा साधु कै संग पाप लायन साध संग अमृत गुण गायन साध के संग सुरभ थान गामु नानक साध के संग सफल जनामु साध के संग नहीं कचकाल दर्शन पेट तोत निहाल साध के संग कलुकत हरै साध के संग नरक पर हरै साध के संग इहां उहां सुहेला साध संग बिछड़ तर मेला जो इच्छा सोई फल पावे साधक संग न बिरथा जावे पार ब्रह्म साध रिद बसै नानक उदरै साध सुन रसै साधक संग सुनो हर नाउ साध संग हर के गुण गाओ साधक संग न मन ते बिसरै साध संग सर पर निस्तरै साधक संग लगै ब्रह्म मीठा साधु कै संग घट का डीठा साध संग भय आज्ञाकारी साध संगत भई हमारी साधक संग मिटे सब रोग नानक साध पेटे संजोग साध की महिमा वेद न जाने जीता सुने तीता बख्याने साध की उपमा त्यो गुण ते दूर साध की उपमा रही भरपूर साध की शोभा का ना ही अंत साध की शोभा सदा बेअंत साध की शोभा उच ते उची साध की शोभा मूच ते मूची साध की शोभा साध बने आई नानक साध प्रपीत न पाई श्लोक मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेखे किस बिन कोय नानक लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा नरलेप जैसे जल में कमल अलेप ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर सर्व को सुख ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान जैसे राज रंग को लागे तुल भवान ब्रह्म ज्ञानी कै धीर जेक ज्यों बसता को खुदै को चंदन लेप ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ नानक जो पाव का सह स्वभाव ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जला ब्रह्म ज्ञानी कै मन हुए प्रगाश जैसे तारु पर आकाश ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र शत्रु समान ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान ब्रह्म ज्ञानी उच्च ते उच्चा मने अपना है सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी सेजन पय नानक जिन प्रव्याप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल किरी नातम रस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी
ब्रह्मज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्मज्ञानी की निर्मल युक्ता, ब्रह्मज्ञानी का भोजन ज्ञानन, ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्मज्ञानी एक ऊपर आसु, ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाशु, ब्रह्मज्ञानी का गरीबी समाहा, ब्रह्मज्ञानी पर उपकार वाहा, ब्रह्मज्ञानी के नाही तंदा, ब्रह्मज्ञानी ले तावत बंदा, ब्रह्मज्ञानी के हुए सुफला, ब्रह्मज्ञानी सुफल फला, ब्रह्मज्ञानी संग सगल उदारु, नानक ब्रह्मज्ञानी जपे सगल संसारु, ब्रह्मज्ञानी के रंग, ब्रह्मज्ञानी के बसे प्रसंग, ब्रह्मज्ञानी के नाम आधारु, ब्रह्मज्ञानी के नाम परवारु, ब्रह्मज्ञानी सदा सजागतु, ब्रह्मज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागतु, ब्रह्मज्ञानी के मन परमानंदु, ब्रह्मज्ञानी के घर सदानंदु, ब्रह्मज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म का पिता, ब्रह्मज्ञानी एक संग हिता, ब्रह्मज्ञानी के हुए चिंतु, ब्रह्मज्ञानी का निर्मल मंतु, ब्रह्मज्ञानी इस करे प्रव्याप, ब्रह्मज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्मज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइय, ब्रह्मज्ञानी को बल बल जाइए, ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्मज्ञानी की कीमत नाही, ब्रह्मज्ञानी के सगल मन माही, ब्रह्मज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्मज्ञानी को सदाधीश, ब्रह्मज्ञानी का कथिया न जाय अदाख्यर, ब्रह्मज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्मज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने, ब्रह्मज्ञानी का अंत न पारु, नानक ब्रह्मज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्मज्ञानी सब श्रेष्ठ का कर्ता, ब्रह्मज्ञानी सद जीव नहीं मरता, ब्रह्मज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्मज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्मज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्मज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्मज्ञानी आप संकार, ब्रह्मज्ञानी की शोभा ब्रह्मज्ञानी बनी, नानक ब्रह्मज्ञानी सर्व का धनी, श्लोक उरतार है जो अंतरनाम, सर्व में पिक है भगवान, निमक निमक ठाकुर नमस्कार है, नानको पर सगल निस्तार है, अष्टपति मिथ्या नाही रसना परसु, मन में प्रीत निरंजन दर्शो, परत्र रूप न पिक है नित्र, साध की टैर संसंग हे, करना सुने काहू की निंदा, सबते जाने आप उसको मंदा, गुर प्रसाद विख्या पर हर है, मन की वासना मन ते टर है, इंद्री जित पंच दोख ते रह, तो नानकूट मदे वैसा परसो, वैष्णो सो जिसो परसो प्रसानो, विष्णु की माया ते भिन्न, कर्म करत हो वैने कर्म, तिस वैष्णु का निर्मल धर्म, काहू फल की इच्छा नहीं बाचे, केवल भगत कीर्तन संग्राचे, मन तने अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल, आप जड़े वै नाम जपावै, नानको वैष्णु परमगत पावै, भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्याग दुष्ट का संग, मंते बिनस सगला भरम, कर पूजे सगल पार ब्रह्म, सासन पापा मलख होवै, तिस भगवती की मत उत्तम होवै, भगवंत की टहल करै नित नीत, मन तन अर्पै विष्ण प्रीत, हर के चरण हृदय बसावै, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै, सो पंडित जो मन प्रबोधै, राम नाम आत्म सोधै, राम नाम सारस पीवै, उस पंडित के उपदेश जग जीवै, हर की कथा हृदय बसावै, सो पंडित फिर जो नायावै, वेद प्राण सिमरत बूझै मूल, सूखम मैं जानै असूल, चौवरणा को देव देश, नानक उस पंडित को सदा देश, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौवरणा मैं जपै को नाम, जो जो जपै तिसकी गत होए, सासु पावै जन कोय, कर कृपा अंतर उर तारै, पस प्रेत मुक्त पात्र को तारै, सर्वलोका औकद नाम, कल्याण रूप मंगल गुणगाम, काहू जुगत कित न पाइय धर्म, नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म, जिसके मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत राम दास, आत्म राम तृष्ण दरियाया, दास जसंतन पाए तिन पाया, सदा निकट निकट हर जान, सो दास दर गय प्रवान, अपने दास को आप कृपा करै, तिस दास को सब सूझी फरै, सगल संगा तुम दास, ऐसी जुगत नानक राम दास, प्रभ की आज्ञा तुम हितावै, जीवन मुख सो कहावै, तैसा हर तैसा सोग, सदा अनंत नहीं वियोग, तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा मृत तैसी बिखाटी,
तैसा मान तैसा विमान तैसा रंग तैसा राजान जो वरताय साई जुगत नानको पुर कह जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाऊ जित जित कर राखै तैसा ते नाओ आपे करण करावन जो प्रभावै सोई पुन हो पसरो आप अंत तरंग लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग जैसी मध्य तैसा प्रकाश पार ब्रह्म करता बिना सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक भय निहाल श्लोक उस्तत करे अनेक जन अंत न पार अवार नानक रचना प्रभ रचि बहुविध अनेक प्रकार अष्टपदी कई कोट हुए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पै तीर्थवासी कई कोट बन भ्रमय उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपीसर होते कई कोट आत्म ध्यान धार है कई कोट कवका विचार है कई कोट नवतन नाम त्यावै नान करते कंत न पावै कई कोट पै अभिमानी कई कोट अंध अज्ञानी कई कोट कृपण कठोर कई कोट अभिगात्म निकोर कई कोट पर दर्भ को हिर है कई कोट पर दुख न कर है कई कोट माया शरमाही कई कोट परदेश परमाही जित जित लाओ तित तित लगना नानक करते की जाने करता रचना कई कोट सिज्जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर्प उपाय कई कोट पात्र भिख निपजाए कई कोट पवन पानी बैसंतर कई कोट देश भूमंडल कई कोट सस्यर सू नक्षत्र कई कोट देवदान इंद्र सिर छत्र सगल समग्री अपने सूता रहे नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार है कई कोट राजस्थान सातक कई कोट वेद प्राण सिमरत शास्त्र कई कोट की रतन समुद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट किए चिर जीवे कई कोट गिरिमेर स्वरण थीवे कई कोट जकिनर पिसाच कई कोट भूत प्रे सुकर मृगाच सब ते निरह सब ते दूर नानक आप लिप्त रहा भरपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरक सुर्ग निवासी कई कोट जन्म है जीवै मरै कई कोट बोजोनी फिरै कई कोट बैठत ही खाहे कई कोट घालै थक पाहे कई कोट किए तनवंत कई कोट माया मै चिंत जय जय पाणा तै तै राखे नानक सब किछ प्रभ कै हाथे कई कोट भय बैरागी राम नाम संगतिन लिव लागी कई कोट प्रभ को खोजंते आत्म मैं पार ब्रह्म लहंते कई कोट दर्शन प्रभ्यास तिन को मिलो प्रभ अविनाश कई कोट मांगे सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिनको हो आप सुप्रसन्न नानक ते जन सदा धन धन कई कोट खाणी अरखंड कई कोट आकाश ब्रह्मांड कई कोट हुए अवतार कई जूत किनो विस्तार कई बार पसर पासार सदा सदै के कंकार कई कोट कीने बहुपात प्रभ ते हुए ब्रह्मा समाता का अंत न जाने कोई आपे आप नानक प्रभ सोए कई कोट बार ब्रह्म के दास तिन हो तात्म प्रगास कई कोट तत् के बेते सदा निहार है को नेत्रे कई कोट नाम रस पीवे अमर पैसा सद ही जीवे कई कोट नाम गुण गावे तुमरा सुख सह समावे अपने जन को साथ साथ सुमारे नानक कोई परमेश्वर के प्यारे श्लोक करण कारण पवे कह दूसर नाही कोई नानक तिस बलिहार ने जल थल मही अलसो अष्टपदी करण करावन करने जोग जो तिस भावै सोई हो किन मैं ताप तापन हारा अंत ने किछ पारा बारा हुक्मे तार अतार रहावै हुक्मे पजै हुक्म समावै हुक्मे ऊच नीच व्यवहार हुक्मे अनेक रंग प्रकार कर कर दिखे अपनी वडियाई नानक समय रहा समाई प्रभावै मानुक गत पावै प्रभावै ता पाथर तरावै प्रभावै बिन शास्त्र राखै प्रभावै ता हर गुण पाखै प्रभावै ता पत सुधारै आप करै अपन विचार है दुआ सिरै काप स्वामी खेलै बिकसै अंतर जामी जो भावै सो कार करावै नानक दृष्टि अवरनायावै को मानुक ते क्या हो आवै जो भावै सोई करावै इसके हाथ हुए तो सब चले जो भावै सोई करे अन जानत विख्या मैं रचै जे जानत अपना बचै पर मैं भूला दै दिसतावै निमक मैं चार कुंट फिर आवै कर कृपा जिस अपनी भग दे नानक ते जन ना मिले खिन मैं नीच कीट को राज पार ब्रह्म गरीब निवाज जाका दृष्ट कछु न आवै तिस तत्काल दा दिस प्रगटावै जाको अपनी करै बख्शीस
ताका लिखा न गन जगदीश जीव पिंड सब तिसकी रास कट कट पूर्ण ब्रह्म प्रगास अपनी बनता बनाई नानक जीवै दिख बढ़ाई इसका बलना ही सहात करण करावन सर्व को नाथ आज्ञाकारी पपरा जियो जो तिस भावे सोई हुंती एक कबहू ऊंच नीच में बसे कबहू सोग हर खरंग हसे कबहू निंद चिंद व्यवहार कबहू ऊब आकाश प्याल कबहू बीता ब्रह्म विचार नानका मिलावन हार कबहू नृत्य करे गोपात कबहू सोए रह दिन रात कबहू माँ क्रोध विकराल कबहू सर्व की हो त्रिवाल कबहू होए बह बड़ राजा कबहू पेकारी नीच का साजा कबू अब कीरत में आवे कबू भला भला कहावे जो प्रवरा कहती वही रह गुर प्रसाद नानक सच कह कबू हो पंडित करे बख्यान कबू मुन तारी लावे ध्यान कबू तट तीर्थ स्नान कबू से साधिक मुख ज्ञान कबू कीट हस्त पतंग हो जी अनक जुन पर मैं परमी नाना रूप जो स्वागी दिखावे जो पर पावे तिवे नचावे जो तिस भावै सोई होए नानक दूजा वर न कोई कबू साध संगति उपावै सुर शांति भौर न आवै अंतर होए ज्ञान प्रगास उस स्थान का नहीं विनाश मंथन नाम रत्ति करंग सदा बसै पार ब्रह्म के संग ज्यों जल में जले आए खटाना त्यों ज्योति संग जो समाना मिट गए गवन पाए विश्राम नानक प्रभु कह सद कुर्बान श्लोक सुखी बसै मस्कीनी आयाप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी जिसके अंतराज अभिमान सो नरक पाती हो स्वान जो जान मैं जो बनवंत सो होवत विष्टा का जंत आप उसको करवंत कहा वह जिन मर भोजन प्रभाव है तन पुम का जो कर गुमान सो मूर्खंदा अज्ञान कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बसावे नानकिया मुक्ता कै सुख पावे धनवंता हुए कर गरबावे तिन समान का संग न जावे पौल स्कर मानुक ऊपर करे आसु पल पीतर तक हुए बिनासु सब ते आप जाने बलवंत किन में हुए जाए पसमंत किसे न बदे आप अहंकारी धर्म राय किस करे खुआरी गुर प्रसाद जाका मिटे अभिमान सो जन नानक दर गए प्रवान कोट कर्म करे हो तारी श्रम पावे सगले फिर थारी इनकी तपस्या करे अहंकार नरक स्वर्ग फिर अवतार अनिक जतन कर आत्म नहीं द्रवय हर दर कह को कैसे गवय आपस को जो फला कहा वह तुसे फलाई निकट आया वह सर्व किरिंजा कामन होए कौ नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मुझते कछ होए तब इसको सुख ना ही होए जब जाने मैं किछ करता तब लग गर्भ जून मैं फिरता जब तारे कुबैरी मीत तब लगने चलना ही चीत जब लग मोह मगन सुमाई तब लग धर्म राय देव सजाए प्रभ कृपा ते बंधन टूटे गुरु प्रसाद नानक छूटे सहस कटे लक उठता वै तृप्त नाया वै माया पछ पावे अनिक भोग विख्या के करे न त्रिवता वह कब कम रह बिना संतोख नहीं कूरा जय स्वप्न मनोरथ वृत्ति सबका जय नाम रंग सर्व सुख होए बड़ भागी निरय प्राप्त होए कर्ण करावण आपे आप सुदा सुदा नानक हर जाप कर्ण करावन करने हार इसके हाथ कहाँ विचार जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आप सोए जो किस की न सो अपने रंग सब ते दूर सबू कह संग बूझे देखे करे बवे का पै अनेक मरण बिन से आवे न जाए नानक सद ही रहा समाये आप उपदेश समझे आप आपे रचिया सब कह साथ आप किन्नो अपन विस्तार सब कछ उसका करने हार उसते भिन्न कहो किछ होए थान थनंतर एक सोए अपने चलताव करने हार कौतुक करे रंग आप आर मन में अमन अपने माए नानक कीमत कह न जाए सत सत सत प्रभ स्वामी गुर प्रसाद किने वख्यानी सच सच सत सब किन्ना कोट मध्य किने बिरले चीना पला पला पला तेरा रूप अत सुंदर अपार रूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी श्रवण बख्यानी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत श्लोक संत शरण जो जन पर है सो जन उदरण हारु संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी
संत कै दुख नार जा कटै, संत कै दुखन जमते नहीं छुटै, संत कै दुखन सुख सब जाए, संत कै दुख नरक में पाए, संत कै दुखन मत होए मलीन, संत कै दुखन शोभा तेहीन, संत के हथे को रखै न कोई, संत कै दुखन तान भ्रष्ट होए, संत कृपाल कृपा जी करै नानक, संत संग निंदक भी तरै, संत के दुखन ते मुख पवै, संतन कै दुखन काग ज्यों लवै, संतन कै दुखन सर्प जोन पाए, संत कै दुखन त्रिगत जोन किरमाए, संतन कै दुखन तृष्णा मै जलै, संत कै दुखन सब कुछ हलै, संत कै दुखन ते सब जाए, संत कै दुखन नीच निचाए, संत दुखी का ताव को नाहि, नान संत पावै ताहि पीगत पाहि, संत का निंदक मात ताई, संत का निंदक किन टिकन ना पाई, संत का निंदक मा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राज ते हीन, संत का निंदक दुखी आर दीन, संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा विजोग, संत के निंदा दुख में दुख, नान संत पावे तो उसका पी होए मोग, संत का दुखी सदा पवित्र, संत का दुखी किसे का निमित्त, संत के दुखी को डान लागे, संत के दुखी को सब त्यागे, संत का दुखी माँ अहंकारी, संत का दुखी सदा भिखारी, संत का दुखी जन्म मरे, संत की दुख ना सुख ते डरे, संत के दुखी को ना ही टाओ, नान संत भावे ता ले मिलाए, संत का दुखी अद बीच ते टूटे, संत का दुखी कित काज न पहुंचे, संत के दुखी को ध्यान फरमाइए, संत का दुखी उजड़ पाइए, संत का दुखी अंतर ते तो था, यो सास बिना मृतक की लोथा, संत के दुखी की जड़ की चिनाई, अपन बीजा पे ही खाए, संत के दुखी कवर न रखन हार, नान संत भावे तन ले उबार, संत का दुखियों बिल लाए, जो जल बिहोन मछली तलफड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजा, ज्यो पाव किंद नहीं त्रापै, संत का दुखी छुटे केला, ज्यो वाड़ तिलखे तुम्हारी दोहेला, संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सदमिथिया कहत, किरत निंदक का तुर ही भया, नान जो भावे सोई थया, संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत के दुखी को दरगह मिले सजाए, संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी न मरे न जीवाई है, संत के दुखी की पुजै नया सा, संत का दुखी उठ चले निराशा, संत कै दुख न तृष्ट है कोई, जैसा भाव है तैसा कोई होए, पै कीर्तना मिटे कोई, नानक जाने सच्चा सोए, सब कर तिसको कर नैहार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभु की उस्तर करो दिन रात, तिसे त्याओ सास ग्रास, सब कछ वरते तिसका किया, जैसा करे तैसा खोती, अपना के लाभ कर नैहार, दूसर कौन कह विचार, जिसनु कृपा करै तिस नाप नाम दे, बड़भागी नानक जन से श्लोक तजो से आन सुरजनो सिमरो हर हर राय, एक आस हर मन रखो नानक, दुख भरम पो जाय अस्पदी, मानु की टेक वृथि सब जान, देवन को एक है भगवान, जिसके दिए रह अघाय, गौर न तृष्णा लग गया, मारे रखे को आप, मानु कह किच नहीं हा, तिसका हुक्म भूसु कोए, तिसका नाम रखंठ परोए, सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक बिघन न लागे कोए, उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहेला कर लह जियो, नैनो पेक ठाकुर का रंग, सासु बिनसै सब संग, चरण चलो मारो गोबिंद, मिटै पाप जपिए हर बिंद, कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दरगह नानकू चिल मत्था, बड़भागी ते जन जग माही, सदा सुधार के गुण गाही, राम नाम जो करह बिचारु, सीतनवंत गणी संसारु, मन तन मुख बोलै हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी, एक एक एक पछाने, एक उतकी उसो जी जाने, नाम संग जिसका मन मानिया, नानक तिने निरंजन जानिया, गुर प्रसाद अपन आप सुजै तिसकी जानो, तृष्णा बुझे सा संग हर हर जस कै, सर्व रोग त्योहर जन रहत, आंदिन कीर्तन केवल बख्यान, विस्त में सोई निर्वाण, एक ऊपर जिस जन की आसा, तिसकी कटिए चमकी भाषा, पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिसे न लागे दुख, जिसको हर ब्रह्मन चिथे आवे, सो संत सोहेला नहीं दुलावे, जिस प्रभु अपना कृपा करै, सो सेवक को किस ते डरै, जैसा सा तैसा दृष्टाया, अपने कार्य में आप समाया, सोदत सोदत सोदत सीजया,
ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤਾਂ ਸਭ ਉਜਿਆ, ਜਬ ਦੇਖੋ ਤਬ ਸਭ ਕਿਛੁ ਮੂਲ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੁਖਮ ਸੋਈ ਅਸੂਲ, ਨਹਿ ਕਿਛੁ ਜਨਮੈ ਨਹਿ ਕਿਛੁ ਮਰੈ, ਆਪਣ ਚਲਤਾਪ ਹੀ ਕਰੈ, ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਦ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਧਾਰੀ, ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਪੇ ਆਪ, ਸਗਲ ਮੈਂ ਆਪ, ਅਨਿਕ ਯੁਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟਾਪ ਤਾਪ, ਅਵਿਨਾਸੀ ਨਾਹੀ ਕਿਛੁ ਖੰਡ, ਧਾਰਨ ਧਾਰੇ ਹੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡਲ, ਖਪੇ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਆਪ ਜਪਾਏ ਦਾ ਨਾਨਕ ਜਾਪ, ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ ਸੋ ਸੁਖ ਬਾਵੰਤ, ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਉਦਰੇ ਤਿਨ ਮੰਤ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸਗਲ ਉਧਾਰਨ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨ, ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਕਿਰਪਾਲ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਭ ਜਪੈ ਨਿਹਾਲ, ਉਨਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋਈ ਲਾਗੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਆ ਬਿਟ ਭਾਗਿਆ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਪਾਵੈ ਵਿਸਰਾਮ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪ੍ਰਕੋਤਮ ਕਰਮਾਨ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਸੁਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਸੈ ਹਰ ਸੰਗ, ਸਹਿ ਸੁਭਾਇ ਹੋਵੈ ਸੋ ਹੋਏ, ਕਰਨੈ ਹਰ ਪਛਾਣੈ ਸੋਏ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ ਜਨ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ, ਜੈਸਾ ਸਾਥ ਐਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜੇ ਤਿਸ ਮਾਏ ਸਮਾਏ, ਹੋਏ ਸੁਖ ਨਿਦਾਨ ਉਨੂ ਬਣੇ ਆਏ, ਆਪਸ ਕੋ ਆਪ ਦੀਨੋ ਮਾਨੋ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਜਨੇ ਕੋ ਜਾਨ, ਸਲੋਕ ਸਰਵ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ, ਪ੍ਰਭਿਰਤਾ ਜਨਨ ਹਾਰ, ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਉਦਰੀ ਐ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰ, ਅਸਪਦੀ ਟੂਟੀ ਗਾਂਢਨ ਹਾਰ ਗੋਪਾਲ, ਸਰਬ ਜੀ ਆਇ ਆਪੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਸਗਲ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਸ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਤਿਸ ਤੇ ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾਹੇ, ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਹਰ ਜਾਪ, ਅਵਿਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਆਪ, ਆਪਣ ਕੀਆ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਲੋਚੈ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਨਾਹੀ ਤੇਰੈ ਕਿਛ ਕਾਮ, ਗਤ ਨਾਨਕ ਜਪੇ ਕਰਨਾਮ, ਰੂਪਵੰਤ ਹੋਏ ਨਾਹੀ ਮੋਹ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਜੋ ਸਗਲ ਘਟ ਸੋ ਹੈ, ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਿਆ ਕੋ ਗਰਭ ਹੈ, ਜਾ ਸਭ ਕਿਛ ਤਿਸਕਾ ਦੀਆ ਧਰਭਿਆ, ਸੂਰਾ ਜੇ ਕੋ ਕਹਾਵੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਕਲਾ ਬਿਨਾ ਕਹਿਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਹੋਏ ਬਹਿ ਦਾ ਤਾਰ, ਤਿਸ ਦੇਨ ਹਾਰ ਜਾਨੈ ਗਾਵਾਰ, ਜਿਸ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਟੁੱਟੈ ਹੋ ਰੋਗ, ਨਾਨਕ ਸੋਜਨ ਸੁਧਾ ਰੋਗ, ਜੋ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥੰਮੈ ਥੰਮਣ, ਤਿਉਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸੁਦ ਮਨੈ ਅਸਥੰਮਨ, ਜੋ ਪਾਖਾਨ ਆਪ ਚੜ ਤਰੈ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਗਨ ਨਿਸਤਰੈ, ਜਿਉਂ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਮਨ ਹੋਏ ਵਿਗਾਸ, ਜੋ ਮਾਂ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ, ਤਿਉਂ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮਿਲ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ, ਤਿਨ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬਾਂਚੋ ਤੂਰ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਹਰ ਲੋਚਿਆ ਪੂਰ, ਮਨ ਮੂਰਖ ਕਾਹੇ ਬਿਲ ਲਾਈਐ, ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈਐ, ਦੁਖ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵਨ ਹਾਰ, ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਤੂ ਤਿਸੈ ਚਿਤਾਰ, ਜੋ ਕਛ ਕਰੈ ਸੋਈ ਸੁਖਮਾਨ, ਭੂਲਾ ਕਾਹੇ ਬਿਰਿਆ ਜਾਨ, ਕੌਣ ਬਸਤਾਈ ਤੇਰੇ ਸੰਗ, ਲਪਟਰਿਓ ਰਸ ਲੋਭੀ ਪਤੰਗ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਹਿਰਦੇ ਮਾਈ, ਨਾਨਕ ਪਤ ਚੇਤੀ ਕਰ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਵੱਖਰ ਕੋ ਲੈਣ ਤੂੰ ਆਇਆ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਜਬ ਮਾਨ ਲਿਓ ਮਨ ਮੂਲ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਮੈਂ ਤੋਲ, ਲਾਤ ਕੇ ਸੰਤੈ ਸੰਚਾਲ, ਅਗਰ ਤਿਆਗ ਕਿਆ ਜੰਜਾਲ, ਧਨ ਧਨ ਕਹਿ ਸਭ ਕੋਏ, ਮੁਖੂ ਚਲਾਰ ਦਰ ਗੈ ਸੋਏ, ਵਾਪਾਰ ਵਿਰਲਾ ਵਾਪਾਰ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ ਹੈ, ਚਰਨ ਸਾਧਕੇ ਧੋਇ ਤੇ ਪੀਉ, ਵਰਪ ਸਾਧਕੋ ਆਪਣਾ ਜੀਉ, ਸਾਧਕੀ ਧੂਰ ਕਰੋ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸਾਧ ਉੱਪਰ ਜਾਈਏ ਕੁਰਬਾਨ, ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈਐ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਕਾਈਐ, ਐਨਕ ਵਿਘਨ ਤੇ ਸਾਧੂ ਰਾਖੈ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚਾਖੈ, ਓਟ ਗਈ ਸੰਤੈ ਦਰਿਆਇਆ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਮ੍ਰਿਤਕੋ ਜੀਵਾ ਲਨਹਾਰ, ਭੁੱਖੇ ਕੋ ਦੇਵਤ ਆਧਾਰ, ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਜਾ ਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਹੀ, ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਹਿਣਾ ਪਾਏ, ਸਭ ਕਿਛ ਤਿਸਕਾ ਕਰਨੈ ਜੋਗ, ਜੋ ਸਭ ਕਿਛ ਤਿਸਕਾ ਕਰਨੈ ਜੋਗ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਦੂਸਰ ਹੋਆ ਨਾ ਹੋਗ, ਜਪ ਜਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣੀ, ਸਭ ਤੂਚ ਨਿਰਮਲੇ ਕਰਨੀ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੋ ਨਾਮ ਦੀਆ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਥੀਆ, ਜਾ ਕੈ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਤਿਸ ਜਨ ਆਵੈ ਹਰ ਪ੍ਰਚੀਤ, ਭਗਤ ਭਗਤ ਸੁਣਿਐ ਤਿਉ ਲੋਏ, ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਕੋ ਹੋਏ, ਸਚ ਕਰਨੀ ਸਚਤਾ ਕੀ ਰਹਿਤ, ਸਚ ਹਿਰਦੈ ਸਤਮੁਖ ਕਹਿਤ, ਸਾਚੀ ਦਿਲ ਸਚਾ ਆਕਾਰ, ਸਚ ਵਰਤੈ ਸਚ ਆਪਾਸਾਰ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਨ ਸਚ ਕਰ ਜਾਤਾ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਸਚ ਸਮਾਤਾ, ਸਲੋਕ ਰੂਪ ਨ ਰੇਖ ਨ ਰੰਗ ਕਿਛ, ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ, ਤਿਸੈ ਬੁਝਾਈ ਨਾਨਕਾ, ਜਿਸ ਹੋਵੈ ਸੋ ਪ੍ਰਸਾਨੋ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਅਵਿਨਾਸੀ ਬ੍ਰਹਮਨ ਮੈਂ ਰਾਖ, ਮਾਨੁਕੀ ਤੂ ਪ੍ਰੀ ਤਿਆਗ, ਤਿਸ ਤੇ ਪਰ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਕੋਈ, ਸਰਵ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਸੋਏ, ਆਪੇ ਬੀਨਾ ਆਪੇ ਦਾਨਾ, ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਗਹੀਰ ਸੁਜਾਨਾ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਦਿਆਲ ਬਖਸ਼ੰਦ, ਸਾਧ ਤੇਰੇ ਕੀ ਚਰਨੀ ਪਾਉ, ਨਾਨਕ ਕੈ ਮਨ ਹੋ ਅਨੁਰਾਉ, ਮਨਸਾ ਪੂਰਨ ਸਰਨਾ ਜੋਗ, ਜੋ ਕਿਰਪਾਇਆ ਸੋਈ ਹੋਗ, ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾ ਕਾ ਨਿਤਰ ਹੋਰ, ਤਿਸਕਾ ਮੰਤਰ ਨ ਜਾਣੈ ਹੋਰ,
अनद रू मंगल सज जाकै सर्व थोप सुनिय करता कै राज में राज योग में जोगी तब मैं तपेश्वर कृष्ण में भोगी त्याई त्याई भगत सुख पाया नानक तिस पुरख का किन अंत न पाया जा की लीला की मित नाही सगल देव हरि अवगाहि पिता के जन्म की जाने पूत सगल प्रोही अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जन दे जन दास नाम त्यावै से त्यो गुण मैं जाको परमाए जिन मरे फिर आवै जायु जिनि तिसके स्थान जैसा जिनावै तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना भे करे करंग नाना बिद किनम विस्तार प्रभु नासी एक अंकार नाना चलत करे किनवाई पूरे हो पूर्ण समटाए नाना बिद कर बणत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब कट दिसके सब दिसके ठाउ जप जप जीवै नानक हर नाउ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मंड नाम के तारे सिमरत वेद पुराण नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आकाश पाताल नाम के तारे सगल अकाल नाम के तारे पुरिया सब पवन नाम के संग उतरे सुन श्रवण कर कृपा जिस अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सोजन गत पाए रूप सत जा का सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जा की बाणी सत पुरख समाए समानी सत कर्म जा की रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सफली सत नाम प्रभु का सुखदाई विश्वास सत नानक गुरु ते पाई सत बचन साधु उपदेश सत ते जन जाके हृदय प्रवेश सत नृत बुझै जे कोय नाम जपता की गत होए आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित गत जिसकी सिरसु करने हार और न बूझ करत विचार करते की मित न जाने किया नानक ज्योत स्वभाव है सो वर्तिया बिस्मन बिस्म भय बिस्माद जिन बूझया तिसाया स्वाद रब कै रंग राजन रही गुर कै वचन पदार्थ लही हो जाते दुख कटन हार जा कै संतर संसार जनका सेवक सुवट भागी जिन कै संग एक लिवलागी गुण गोविंद कीर्तन जन गावै गुर प्रसाद नानक वल पावै श्लोक आद सच जुगाद सच है पे सच नानक हो सी पे सच अष्टपदी चरण सत सत प्रसन हार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखन हार नाम सत सत्यावन हार आप सत सत सवतारी आपे गुण आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभक्ता सुरत सत सत जसुनता बुझनार को सत सब होए बुझनार को सत सब को होए नानक सत सत प्रभ सोए सत स्वरूप हृदय जिन सत स्वरूप हृदय जिन मानिया करण करावन तिन मूल पछानिया जा कर हृदय विश्वास पर व्याया तत् ज्ञान मन प्रगटाया पै ते निरप हुए बसाना जिस त्यो बजै तुझमाय समाना बस्त माय ले बस कढाई ताको भिन्न कह न जाई बुझै बुझनहार विवेक नारायण मिले नानक एक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर के सेवक कै मन प्रतीत ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत ठाकुर को सेवक जाने सांगो प्रभु का सेवक नाम कह रंगो सेवक को प्रपालन हारा सेवक की राख निरंकारा सो सेवक जिस तया प्रभु धारे नानक सो सेवक सास सास सुमारे अपने जन का परदा ठाके अपने सेवक की सर पर रखे अपने दास को दे बढ़ाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आपत रख है ताकि गत में तो कोई न लाख है प्रभु के सेवक को न पहुंचे प्रभु के सेवक कुछ दे उचे जो प्रभु अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दास दिस प्रगटाया निकी कीरी में कल रख है भस्म कर लश्कर कोट लाख है
जिसका शासन काट ताप होता को राखत देख रात मानस जतन कर्तव्य पात जिसके कर्तव्य जात मारण राखे वरण कोय सर्व जिया का राखा सोए काहे सोच करे रे प्राणी जप नानक प्रबल विडानी बार बार बार प्रभु जपिय पी अमृत मन तंत्र पिय नाम रतंजन गुरमुख पाया तिसके छबर नाही दृष्टाया नाम ता नामो रूप रंग नामो सुखर नाम कर संग नाम रस जो जंत्र बताने मंत्र नाम मैं नाम समाने उठत बैठ सोवत नाम कहो नानक जन कै सद काम बोलो जय जीवा दिन रात प्रभ अपने जन की नींदात करै भगता तुम कह चाहे प्रभ अपने शो रह सुमाए जो हुआ होत सो जाने प्रभ अपने का हुक्म पहचाने तिसकी महिमा कौन बखानू तिसका गुण कह कना जानू आठ पैर प्रभ से हजूरे कहो नानक सही जन पूरे मन मेरे तिन की उठ ले मन तने अपना तिन जन दे जिन जने अपना प्रभु पछाता सो जन सर्व तोक का दाता तिसकी शरण सर्व सुख पावे तिसके दर्श पाव मिटावे और स्यानु सगली छाड़ तिस जन की तू सेवा लागावन जान होवी तेरा नानक तिस जन के पूजो सद पैरा सलोक सत पुरख जिन जाने सतगुर तिसका नाओ तिसके संग सिकुदर नानक हर गुण गाओ अष्टपदी सतगुर सिक्की करै प्रतपाल सेवको गुर सदा दयाल सिक्की गुर दुरमत मलहिरै गुर बचनी हर नाम उचरै सतगुर सिक्के बंधन काटै गुर का सिख विकार ते हटै सतगुर सिक्को नाम धन दे गुर का सिख वडभागी हे सतगुर सिक्का हलत पलत सुवारै नानक सतगुर सिक्को जी नाल सुमारै गुर कै ग्रह सेवक जो रह गुर की आज्ञा मन में सह आपस को कर कचना जनावे हर हर नाम हृदय सत्यावे मन बेचै सतगुर कै पास ते सेव के कार्य रास सेवा करत होए नेकामी तिसको होत प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जिसे आप करे नानक सो सेव गुर की मतले बीस विश्वे गुर का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गत जाने सो सतगुर हृदय हर नाओ अनेक बार गुर को बल जाओ सर्व निदान जी का दाता आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म मैं जानो जन मैं पार ब्रह्मो एक कहे आप नहीं कछ परमो सह से आनप लया ना जाइये नानक ऐसा गुर बड़ भागी पाइये सफल दर्शन पेखत पुनीत परसत चरण गत निर्मल रीत भेटत संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दर गह गवे सुनकर बचन करन आघानी मन संतोखा तुम पतियानी पूरा गुर अखियो जाका मंत्र अमृत दृष्ट भी कह हुए संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस भावे तिसलय मिलाए जिह भाई कुस्तत अनेक सतपुरख पूर्ण बवेक काहू बोल न पहुँचत प्राणी अगम गोचर प्रभ निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत किने न पाई अनिक भगत बंधन नित करै चरण कमल हृदय सिमरै सद बलिहारी सतगुरे अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने हिवा रस पावै जन कोए अमृत पीवै मरसु होए इस पुरखा नहीं कदे विनाश जाकै मन प्रगटे गुणतास आठ पैर हर का नाम ले सच उपदेश सेवको दे मोह माया कै संग न लेप मन में रखै हर हर एक अंधकार दीपक प्रगासे नानक परमु दुख तहते नासे तब तुम्हाय ठाठ वरताई अनंत भया दुख ना टे पाई जन्म मरण के मिटिया देशे साधु के पूर्ण उपदेशे पहु चुका निर्भो भसे सगल व्याध मंते कह नसे जिसका सातिन कृपा तारी सा समझ अपना मरारी थित पाई चुके ब्रह्म गवन सुन नानक हर हज श्रवण निर्गुण आप सरगुण पियो ही कला तार जिन सगली मोही अपने चरित प्रभा बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिन दूजा ना ही कोई सर्व निरंतर एको सोए ओत पोत रव्या रूप रंग
भय प्रगासु साधक संग रच रचना अपनी कलतारी अनिक बार नानक बलिहारी श्लोक साथ न चाले बिन भजन बिखिया सगली चार हर हर नाम कमावना नानक यो तन सार अष्टपदी संत जना मिलकर हो विचार एक सिमर नाम आधार और उपाव समीत विसार हो चरण कमल हृदय में उतार हो करण कारण सुप्रभ समरथ दृढ़ कर गहो नाम हरवत यो तन संचो हो वो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एकास रखो मन माहि सर्व रोग नानक मिट जाहि जिस तन को चार कुंट पुटता वह सो तनु हर सेवा ते पावह जिस सुख को नित बाचे मीत सो सुख साधु संग परीत जिस शोभा को करे भली करनी सा शोभा भज हर की सरनी अनिक उपावी रोग न जाए रोग मिटै हरव कदलाए सर्व निदान में हर नाम निदान जप नानक दर गह परवान मन प्रभु तू हर कह नाई दय दिस्ताव था बैठाए ताको बिघ्न न लागे कोए जाके हृदय वसै हर सोए कल ताती ठंडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ पौ बिन सह पूर्ण होयास भगत पाया तुम परगास तित कर जाए बसै अविनाशी कहो नानक काटी जम फासी तत विचार कह जिन साचा जिन मरै सु काचो काचा आवा गवन मिटै प्रभु सेव आप त्याग शरण गुरुदेव यों रतन जन्म का हुए उधार हर हर सिमर प्राण आधार अनिक उपावना छूट न हारे सिमरत शास्त्र वेद विचारे हर की भगत करहु मन लाए मन बंचत नानक फल पाए संग न चालस तेरे तना तू क्या लपटावे मूर्ख मना सुतमीत कुटंबर बनता इनते कहो तुम कवन सुनाता राज रंग माया विस्तार इनते कहो कवन छुटकार असहस्ती रथ सुवारी झूठा डंप झूठ पासारी जिन दिए तिस बुझे ना बिगाना नाम विसार नानक पछताना गुर की मत तू ले याने भगत बिना बो डूबे सियाने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत चरण कमल राखो मन वाहे जन्म जन्म के किल विख जाहे आप जपहु अवरा नाम जपावो सुनत कहत रहत गत पावो सार भूत सत हर को नाओ सह सुभाहे नानक गुण गाओ गुण गाओ तिरु तिर समैल बिनस जाय हो मैं बिखैल हुए चिंत बसै सुख नाल सास ग्रा सरनाम संभाल चाड़ सियान सगली मना सास मुखावे सच तना हर पूंजी संच करो बिहार यहां सुख दर गह जयकार सर्व निरंतर एको देख कहो नानक जाके मस्तक लेख एको जप एको सालाहे एक सिमर एको मन आहे एक सके गुण गाओ अनंत मंत्र जाप एक भगवंत एको एक एक हर जाप पूर्ण पूरे हो प्रव्याप अनेक विस्तार एक ते भये एक अराध प्राचित गए मंत्र अंतर एक प्रभ राता गुर प्रसाद नानक एक जाता श्लोक फिरत फिरत प्रभ आया परया तो शरणाए नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाए अष्टपदी
चाचक जन जाचे प्रविधान कर कृपा देवो हरनाम। साजना की मांगो तूर पार ब्रह्मिर सरदा पूर, सदा सदा प्रभु के गुण गावो सास सास प्रभु तुम्हें ते आवो। चरण कमल स्यों लागे प्रीत भगत करूं प्रभु की नितनीत। एको टेको आधार नानक मांगे नाम प्रसाद, प्रभु की दृष्ट महा सुख होए।

लई जन को प्रभ होयो दयाल सेवक कीनो सदा निहाल बंधन काट मुक्त जन भया जन्म मरण दुख भ्रम गया इच पुन्नी सरदा सपूरी रब रहया सदसंग हजूरी जिसका साथिन लिया मिलाई नानक भगती नाम समाई सो क्यों बिसरै जे काल न भानै सो क्यों बिसरै जे किया जानै सो क्यों बिसरै जिन सब किछ दिया सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया सो क्यों बिसरै जे गुण मैं राखै गुर प्रसाद को बिरला लाखै सो क्यों बिसरै जे बिकते काढ़ै जन्म जन्म का टूटा गाढ़ै गुरपूरै तत है बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया साजन संत करहु एव काम आन त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अवरै नाम जपावो भगत भाई तरिए संसार बिन भगती तन हो सी चार सर्व कल्याण सुख निदना बूढ़त जात पाए विश्राम सगल दुख का हो वतनास नानक नाम जपो गुणतास उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मन तने अंतर ही सुहाओ नित्रो पेख दर सुख होए मन बिगसै सात चरण तोए भगत जना कै मन तन रंग बिरला को पावै संग एक बसदी चै करमया गुर प्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कही न जाए नानक रहया सर्व समाए प्रभु संद दीन दयाल भगत वच्छल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतपाल आद गुरु कारण करतार भगत जना के प्राण आधार जो जो जपै सो होए पुनीत भगत पाए लावे मनहीत हम निर्गुण यार नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान सर्व वैकुंठ मुक्त मुख पाए एक निमक हर के गुण गाए अनिक राज भोग बढ़ियाई हर के नाम की कथा मन पाई बहु भोजन का प्रसंगीत रसना जपती हर हर नीत भली सुकरणी शोभा धनवंत हृदय बसे पूर्ण गुरुमंत साध संप्रभ देहो निवास सर्व सुख नानक परगास श्लोक सार गुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप अपन किया नानका आपे ही फिर जा पष्ट पदी जब कार्य कछ न दृष्टिता आप हम तब कहते होता जब तारी अपन सुन समाध तब बैर विरोध के संकमात जब इसका वर्ण चिन्ह जापत तब हरक सो कौ किस व्यापत जब अपन आपा पार ब्रह्म तब मोह का किस होवत परम अपन खेला वरतीजा नानक करने हार न दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कौ किस को गनी जब एक हर गुम पार तब सर नरक सुर कौ कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सह सुभाई तब शिव सकत कहो कित ठाई जब आप है आप अपनी ज्योत धरै तब कवन निडार कवन कत डरै अपन चलताप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख आपन आसन तय जन्म मरण को कहा बिना सुन जब पूर्ण करता ब्रह्म सोए तब जब की त्रास कहो।

जब अभिगत गोचर प्रवेका तब चित्रगुप्त किछ पूछत लेखा जवनाथ निरंजन गोचर गादे तब कौन छुट्टे कौन बंधन भादे आपन आपा पिए चल जाओ नानक आपन रूपा पियो पर जाओ जह निर्मल पुरख पुरख पद होता तह बिन मैल कहो क्या तोता जय निरंजन निरंकार निर्वाण तय कौन को मान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश तय चल चित्र लगत को खीश जय ज्योत स्वरूपी जो संग समावे तय किसे पू कवन त्रिपतावे करण करावन करण हार नान करते का नाही सुमार जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई जय सर्व कलाया पै प्रवीन तै बेद कतेब का कोचीन जब अपन आप आपुरतार है तो सगन अप सगन कहा विचार है जय अपन ऊच अपन आप नीरा तह कौन ठाकुर कौन कही है चेरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जान हो आप जय अचल अचेद भेद समाया ऊहा किसह व्यापत माया आपस को आपह आदेश त्यो गुण का नाही प्रवेश जय कह एक एक भगवंता ते कौन चिंत किस लागे चिंता जे अपन आपा पतियारा ते कौन कथे कौन सुनने हारा बहु बेअंत ऊच ते उचा नानक आपस को आपह पहुंचा ज्या ब्रच्यो परपंच कारु त्यो गुण में किन्नो विस्तार पापुंत पही कहावत को नरक को सुर्ग बंछावत आल जाल माया जंजाल होमे मोह परम पै पार दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार की उपख्यान अपन खेला कर देखे खेल संकोच है तो नानक एक है जय अभिगत भगत है आप जय पसरे पासार संत प्रताप दूहू पाका या पे तनी उनकी शोभा उन्हू बनी आपह कौत करे अनद चोज आपह रस भोगन निर्जोग जिस भावे तिस अपना इलावै जिस भावै तिस खेल खिलावै बेसमार ताहा गंत अतुलै ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बुलै श्लोक जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तन हार नानक को पसरिया दूजा कह दृष्टार अष्टपदी आप कथे आप सुनने हार आप है एक आप विस्तार जात भावे ता सृष्ट उपाय अपने भाने ले समाए तुम ते भिन्न नहीं किस होए अपन सूत सब जगत पर होए जाको प्रभ जीव आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत् का बेता नानक सगल सृष्ट का जीता जी जंतर सबता कै हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस राखे तिस कोए न मारे सो मुआ जिस मनो बिसारे तिस तज अवर कहा को जाए सब सिर एक निरंजन राय जी की जुगत जाकै सब हाथ अंतर बाहर जानो साथ गुण निदान बेअंत अपार नानक दास दा बलिहार
पूरण पूरहे दयालो, सब उपर होवत कृपालो। अपने कर्तव्य जाने आप, अंतर जामी रहो व्याप। प्रतपालै जीअन बहुपात, जो जो रचियो सो तिसह त्यात। जिस भावै तिस लय मिलाए, भगत करै हर के गुण गाए। मन अंतर विश्वास कर मानिया, करनहार नानक इक जानिया। जन लागा हर एक कहनाए, तिसकी आस न बिरथी जाए। सेवक कौ सेवा बने आई, हुकम बूझ परम पद पाई। इसते उपर नहीं विचार, जाकै मन बसिया निरंकार। बंधन तोर भए निर्वैर, अंदिन पूजह गुर के पैर। यह लोक सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभया प्रह मेले। साध संग मिल करो आनंद, कुन गावो प्र परमानंद। राम नाम तत् करो विचार, दुर्लभ देह का करो उदार। अमृत वचन हर के गुण गाओ, प्राण तरण का है सुहाओ। हाथ पैर प्रपिक हो नेरा, मिटे अज्ञान बिन से अंधेरा। सुनो पदे सिर दै बसावो, मन इच्छे नानक फल पावो। हलत पलत दोए लेहो सवारो, राम नाम अंतर उरतारो। पूरे गुर की पूरी दिखिया, जिस मन बसै ते साच परिखिया। मंत्र नाम जपो लिव लाए, दुख दर्द मन ते पौ जाए। सच व्यापार करहु व्यापारी, दरगह निबह खेप तुम्हारी। एका टेक रखो मन माहे, नानक बहुर न आ वह जाए। तिस्ते दूर कहा को जाए, उपरै राखन हार त्याए। निरपौ जपै सगल पौ मिटै, प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै। जिस प्रभ राखै तिस नाहीं दुख, नाम जपत मन होवत सुख। चिंता जाए मिटै अहंकार, तिस जन कौ कोय न पहुचनहार। सिर उपर ठाडा गुर सूरा, नानक ताके कारज पूरा। मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट, दर्शन पेखत उदरत सृष्ट। चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप। धन सेवा सेवक परवान, अंतर जामी पुरख प्रधान। जिस मन बसै सुहूत निहाल, ताकै निकट नयावत काल। अमर भय अमरा पद पाया, साध संग नानक हर त्याया। श्लोक ज्ञानंजन गुर दिया, अज्ञान देर विनाश। हर कृपा ते संत पेटिया, नानक मन प्रगास। अष्टपदी संत संगंतर प्रभ डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। सगल समग्री एक स्कट माही, अनिक रंग नाना दृष्टाहि। नाओ निदमृत प्रभ का नाम, ते ही मैं इसका विश्राम। सुन समाद अनहत है नाद, कह न जाई अचर्ज विस्माद। तिन देखिया जिसाप दिखाए, नानक तिस जन सो जी पाए। सो अंतर सो बाहर अनंत, घट घट व्याप रहा भगवंत। तरन माहे आकाश पयाल, सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल। बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म, जैसी आज्ञा तैसा कर्म। पौन पानी बैसंतर माहे, चार कुंट दा दिशे समाहे। तिस ते भिन्न नहीं कोठाओ,
गुर प्रसाद नानक सुख पाओ। वेद प्राण सिमृत मह देख, शशि सूर नक्षत्र मह एक। वाणी प्रभ की सबको बोले, आप डो न कहू डोले। सर्व कला कर खेले खेल, बोल न पाये कुन्ह अमूल। सर्व ज्योत में जाकी ज्योत, तारे हो स्वामी ओत पोत। गुर प्रसाद परम का नास, नानक तिन मह इहो विसास। संत जना का पेखन सब ब्रह्म, संत जना कै हृदय सब धर्म। संत जना सुने सुब बचन, सर्व व्यापी राम संग रचन। जिन जाता तिसकी ये रहत, सत बचन साधु सब कहत। जो जो हुए सोई सुख माने, करण करावन हार प्रभ जाने। अंतर बसे बाहर पियो ही, नानक दर्शन देख सब मोही। आप सत किया सब सत, तिस प्रभ ते सगली उत्पत। तिस भावै ता करे विस्तार, तिस भावै ता एक अंकार। अनिकला लखी नह जाए, जिस भावै तिस लय मिलाए। कवन निकट कवन कहिए दूर, आपे आपा भरपूर। अंतरगा जिस आप जनाई, नानक तिस जन आप जाई। सर्वभूतावर तारा, सर्व नैना पिख नहारा। सगल समगरी जाका तन आपन, जसाप ही सुना। आवण जाने खेल बनाया, ज्ञाकारी की नी माया। सब कह मत अलिप्त रह, जो किछ कहना सुआपे कहे। आग्या आवे आग्या जाए, नानक जा पावे ता ले समाए। इसते हुए सुनाही बुरा उरै, कहो किने कछ करा भला। कर तू तत निकी, आपे जाने अपने जी की। आप साज धारी सब साच, ओत पोत अपन संग्राच। ताकि गत मित कही न जाए, तू सिर हुए ता सोची पाए। जिसका किया सब प्रवान, गुर प्रसाद नानक यो जान। जो जाने ते सदा सुख हुए। आप मिलाए ले प्रभ सोए, उतनवंत कुलवंत पतवंत। जीवन मुख जिस हृदय भगवंत, धन धन धन जन आया। जिस प्रसाद सब जग तराया, जन आवन का है सुआऊ। जन कै संग चित आवै नाऊ, आप मुक्त मुक्त करे संसार। नानक जन को सदा नमस्कार। स्लोक पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जाका नाऊ। नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ अष्टपदी। पूरे गुरु का सुनो उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेक। साथ साथ सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। आसन त्यागो तरंग, संत जना की धूर मन मांग। आप छोड़ बेनती करो, साथ संग अगन सागर तरु। हर तन के पर ले पंडार, नानक गुरु पूरे नमस्कार। खेम कुशल सहजानंद, साथ संग पज परमानंद। नरक निवार उधारो जियो, गुण गोविंद अमृत रस पियो। चित चित वो नारायण एक, एक रूप जाके रंग अनेक। गोपाल दमोदर दीन दयाल, दुख पंजन पूरन कृपाल। सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का यह आधार। उत्तम श्लोक साध के वचन, अमलीक लाले रतन। सुनत कमावत होत उदार, आप तरह लुक कै निस्तार। सफल जीवन सफलता का संग, जाके मन लागा हर रंग। जय जय सबदन आहद वाजय, सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजय। प्रभ ते गोपाल महांत कै माथे, नानक कुदरे तिन कै साथे। शरण जोग सुन शरण आए, कर कृपा प्रभा मिलाए। मिट गए बैर भय सबरे, नम्रत नाम साध संग लैन। सो प्रसन्न भय गुरुदेव, पूर्ण होई सेवक की सेव। आल जंजाल विकार तेरे ते, राम नाम सुन रसना कहते। कर प्रसाद दया प्रभ धारी, नानक निब ही खेप हमारी। प्रभ की उस्तद करो संत मीत, सावधान का गुरचीत। सुखमनी सहज गोविंद गुनाम, जिस मन बसे सुहोत निदान। सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए, प्रधान पुरख प्रगट सब लोए। सब ते उच पाए स्थान, बहुर न हो आवन जान। हर तन खाट चले जन सोए, नानक जिसे प्राप्त होए। खेम शांत रित नव निध, बुद्ध ज्ञान सर्व तय सिद्ध। ज्ञान विद्या तप जुग प्रभ ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान। चार पदार्थ कमल प्रगा, सब कहमत सगल ते उदास।
सुंदर चतुर तत् का वेता समदर्शी एक दृष्टिता ए फल तिस जन कै मुख बने। गुरु नानक नाम बचन मन सुने हो निदान जपै मन कोए सब जुग मैता की गत होए। गुण गोविंद नाम धुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत कै मन विश्राम कूट अपराध सासंग मिटै संत कृपा ते जम ते छुटै जाके मस्त करम प्रपाए सा सर नानक ते आए। जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत तिस जन आवै हर प्रवचीत जन्म मरणता का दुख निवारै दुर्लभ दे तत्काल उधारै निर्मल शोभा अमृता की बानी एक नामन वाहि सुमानी दुख रोग बिन से पै परमु

सब ते उचता की सुबाबनी नानक हे गुण नाम सुखमनी सुखमनी सुखमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

ਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿ ਭੰਗ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਪਾਰ ਸਹਿ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੈ ਨਾਲ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਤੁੱਟੈ ਪਾਲ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸੀਸ ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਪਵਾਈ ਹੈ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਹਮੈ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਏ ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਣ ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੇ ਨਿਸਾਣ ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਚਾਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰ ਦੇਹ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨਾ ਆਵੈ ਤੋਟ ਕਥ ਕਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ ਹੁਕਮੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹੋ ਨਾਨਕ ਵਿਗਸੈ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹੋ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ ਆਖੈ ਹੈ ਮੰਗਹ ਦੇਹ ਦੇਹ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ ਫੇਰ ਕੇ ਅਗੈ ਰੱਖੀਐ ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ ਮੋਹੋਂ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ ਜਿਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ ਦੁਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਘਰ ਲਹਿ ਜਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਆ ਸੁਮਾਈ ਗੁਰ ਈਸਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਈ ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨ ਜਾਈ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾ ਵਿਣ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਾਏ ਕਰੀ ਜੇ ਤੀ ਸਿਰਠ ਉਪਾਈ ਵੇਖਾ ਵਿਣ ਕਰਮਾ ਕੇ ਮਿਲੈ ਲਈ ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣੇ ਕੋ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰ ਜਾ ਹੋਰ ਦਸੋਣੀ ਹੋਏ ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਐ ਨਾਲ ਚੱਲੈ ਸਭ ਕੋਏ ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਏ ਕਹਿ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਾਗਲੇ ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵਈ ਤਾਂ ਵਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਕੇ ਕੀਟਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸੀ ਦੋਸ ਧਰੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ ਤੇਹਾ ਕੋਏ ਨਾ ਸੁਜਈ ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋਏ ਕਰੇ ਸੁਣਾ ਹੈ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ ਸੁਣਾ ਹੈ ਧਰਤ ਧਵਲ ਆਕਾਸ਼ ਸੁਣਾ ਹੈ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ ਸੁਣਾ ਹੈ ਪੋਹੇ ਨਾ ਸਕੈ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਾ ਹੈ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ਼ ਸੁਣਾ ਹੈ ਈਸਰ ਬਰਮਾ ਇੰਦ ਸੁਣਾ ਹੈ ਮੁਖ ਸਾਲਾ ਹਨਮੰਦ ਸੁਣਾ ਹੈ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ ਸੁਣਾ ਹੈ ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਾ ਹੈ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ਼ ਸੁਣਾ ਹੈ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ ਸੁਣਾ ਹੈ ਅੱਠ ਸੱਠ ਕਾ ਇਸਨਾਨ ਸੁਣਾ ਹੈ ਪੜ ਪੜ ਪਾਵੈ ਮਾਨ ਸੁਣਾ ਹੈ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ
नानक भगतां सदा विगास, सुनाए दुख पाप का नाश, सुनाए सरा गुणा के गाह, सुनाए सिख पीर पातशाह, सुनाए अंधे पावे राह, सुनाए हाथ होवे अशगाह। नानक भगतां सदा विगास, सुनाए दुख पाप का नाश, मन्ने की गत कही न जाए, जे को कहे पिछे पछुताए। कागद कलम न लिखन हार, मन्ने का बह करन विचार, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मन्ने सुरत होवे मन बुद्ध, मन्ने सगल भवन की सुत, मन्ने मोहे चोटा न खाए, मन्ने जम कै साथ न जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने पथ स्यों प्रगट जाए, मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म सेती संबंध, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मन्ने पावे मुख द्वार, मन्ने परवारे साधार, मन्ने तरे तारे गुर सिखो, मन्ने नानको पावे ही ना पेखो, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। पंच प्रवान पंच प्रधान, पंचे पावा है दरगह मान, पंचा सोहे दर राजान, पंचा का गुर एक त्यान। जे को कह करे विचार, करते कह करने नाही सुमार, तौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखे आजन सूत। जे को बुझै होवे सचियार, तबलै उपर किता पार, धरती होर पर होर होर, तिसते पार तलै कवन जोर। जी जात रंगा के नाव, सबना लिखिया बुड़ी कलाम, एहो लिखा लिख जाने कोई, लिखा लिखिया केता होए, केता तान सवाले हो रूप, केती दात जाने कौन कूत। कीता पसाओ एको कवाओ, तिसते होए लख दरियाओ, कुदरत कवन कहा विचार, वारिया ना जावा एक वार। जो तुद पावे साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख जप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तप ताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन राहे हे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पाक सार, असंख मोन लिव लाए तार। कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार। जो तुद पावे साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूरख अंध कोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गाल वड हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़े यार कूड़े फिराहे, असंख मलेश माल पाखो खाहे, असंख निंदक सिर कर है पार, नानक नीच कह विचार, वारिया न जावा एक वार। जो तुद पावे साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख काहे हे सिर पार हुए। अखरी नाम अखरी साला, अखरी ज्ञान गीत गुण गाह, अखरी लिखन बोलन बाण, अखरा सिर संजोग वखाण। जेन ए लिखे तेस सिर नाहे, जेव फुरमाए तेव तेव पाहे, जेता तीता तेता नाओ, विण नावै नाही को थाओ। कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार। जो तुद पावे साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। भरिए हाथ पैर तन देह, पानी धोता है उतर सोखे, मूत पलीती कपड़ होए, दे साबुन लइए ओ धोए। भरिए मत पापा कै संग, ओह धोपै नावै कै रंग, उन्नी पापी आखण नाहे, कर कर करना लिख लै जाओ। आपे बीज आपे ही खाहो, नानक हुक्मी आवहो जाहो। तीरथ तप दया दत दान, जे को पावै तिल का मान, सुनया मन्या मन कीता पाओ, अंतर गत तीरथ मल नाओ।
सब गुण तेरे मैं नाही कोए, वेण गुण कीते भगत ना होए। सुवस्त आथ बाणी ब्रह्माओ, सत सुहाण सदा मन जाओ। कवन सो वेला वक्त कवन, कवन थेत कवन वार। कवन से रुती माह कवन, जित हुआ आकार। वेल ना पाईया पंडती जे होवै लेख पुराण, वक्त ना पायो कादिया जे लिखन लेख कुराण। थित वार न जोगी जाने, रुत माह न कोई। जा करता सर ठीको साजे, आपे जाने सोई। केव कर आखां केव साला ही, क्यों वरने केव जाना। नानक आखण सब को आखै, एक दो एक सियाणा। वड्डा साहिब वड्डी नाई, कीता जा का होवै। नानक जे को आपौ जाणै, अगै गया ना सोहै। पातालां पाताल लख आगासां आगासो, ओड़क ओड़क भाल थके। वेद कहन एक वात, सहस अठारह कहन कते। बासुलू एक तात, लेखा होए ता लिखिए, लेखा होए विनाश। नानक वड्डा आखिए, आपे जाने आप। सालाही सालाही एती सुरत ना पाईया, नदियां अतै वाह। पवै समुंद ना जानिया है, समुंद साह सुलतान। गिरहा सेती माल तन, कीड़ी तुल ना होवनी। जेत समन हुना भी सरा है। अंत न सिखती कहन ना अंत, अंत न करना देन ना अंत। अंत न वेखण सुन ना अंत, अंत न जापै क्या मन मंत। अंत न जापै कीता आकार, अंत न जापै पारावार। अंत कारण केते बिल लाहे, ताके अंत न पाए जाहे। एहो अंत न जाने कोए, बहुता कहिए बहुता होए। वड्डा साहेब ऊंचा थाओ, ऊंचे उपर ऊंचा नाओ। ए वड ऊंचा हो वै कोए, तिस ऊंचे कौ जाने सोए। जे वड आप जाने आप आप, नानक नदरी करमी दात। बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तमाए। किते मंगा है जोद अपार, किते अगणत नहीं विचार। किते खप तुट है वेकार, किते लै लै मुकर पाहे। किते मूर्ख खाही खाहे, कितिया दुख भूख सद मारो। ए पे दात तेरी दातार, बंद खलासी पाने होए। होर आख ना सकै कोए, जे को खाए को आखण पाए। ओ जाने जे तिया मोहे खाए, आपे जाने आपे दे। आखै से पे के ई के, जिसनो बख से सिफत सलाह। नानक पात साही पात साह। अमूल गुण अमूल व्यापार, अमूल व्यापारिये अमूल भंडार। अमूल आवै अमूल लै जाहे, अमूल पाए अमूला समाहे। अमूल धर्म अमूल दीबाण, अमूल तोल अमूल परवान। अमूल बखसीस अमूल निशान, अमूल कर्म अमूल फुरमान। अमूलो अमूल आखिया न जाए, आख आख रहे लिवलाए। आखै वेद पाठ पुराण, आखै पढ़े करै वख्याण। आखै ब्रह्मे आखै इंदो, आखै गोपी तै गोविंद। आखै ईसर आखै सिद्ध, आखै केते कीते बुद्ध। आखै दानव आखै देव, आखै सुर नर मुन जन सेव। केते आखै आखण पाहे, केते कहै कहै उठ उठ जाए। एते कीते होर करे ता आख ना सकै केई के। जे वड भावै ते वड होए, नानक जाने साचा सोए। जे को आखै बोल विगाड़, ता लिखिए सिर गावार गावार। सो दर केहा सो घर केहा, जित बह सर्ब संभाले। वाजे नाद अनेक असंखा, केते वावण हारे। केते राग परी स्यों कहियन, केते गावण हारे। गावै तुहनो पाउण पाणी बै संत्र, गावै राजा धर्म दुआरे। गावै चित गुपत लिख जाणै, लिख लिख धर्म विचारे। गावै ईसर बर्मा देवी सोहन सदा सुवारे। गावह इंद इंदासन बैठे, देवत्यां दर नाले। गावह सिद्ध समाधि अंदर, गावन साध विचारे। गावन जति सती संतोखी, गावह वीर करारे। गावन पंडित पढ़न रखी सर, जुग जुग वेदा नाले। गावह मोहनिया मान मोहन, सुरगा मश पयाले। गावन रतन पाए तेरे, आठ साठ तीर्थ नाले। गावै जोद महाबल सूरा, गावै खाणी चारे। गावै खंड मंडल वर पंडा,
कर कर रखे तेरे तारे। सेई तुदनो गावे है जो तुद पावन, रखे तेरे भगत रसाले। होर किते गावन से मैं चेतना आवन, नानक क्या विचारे। सोई सोई सदा साचो साहिब साचा साची नाई, है पी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई। रंगी रंगी भाती कर कर जिन सी माया जिन उपाई, कर कर वेखा है कीता अपना जिव तिस दी वडियाई। जो तिस भावै सोई करसी हुक्म ना करना जाई। सो पात साहो साहा पात साहेबो, नानक रहन रजाई। मुंदा संतोख सरम पत झोली, ध्यान की करहै बेभूत। खिंथा काल कुआरी काया जुगत, डंडा प्रतीत। आई पंथी सगल जमाती, मन जीता है जग जीत। आदेश दिसै आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एक वेश। भुगत ज्ञान दया भंडारण, घट घट वाजह नाद। आप नाथ नाथी सब जाकी, रिद सिद अवरा साध। संजोग विजोग दोए कार चलावै, लिखे आवै भाग। आदेश दिसै आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश। एका माई जुगत व्याई, तीन चेले परवान। एक संसारी एक भंडारी, एक लाए दीबान। जिव तिस भावै तिवै चलावै, जिव होवै फुरमान। वेखै उन्ना नदर न आवै, बहुता एहो वेडाण। आदेश दिसै आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश। आसन लोए लोए भंडार, जो किश पाया सो एका वार। कर कर वेखै सिरजनहार, नानक सच्चे की साची कार। आदेश तिसै आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश। एक दूजी बौ लख हो हे, लख हो वै लख वीस। लख लख गेड़ा आखिया है, एक नाम जगदीस। ए तराहि पत पवड़ियां चढ़िया होए इकीस। सुन गला आकाश की कीटा आई रीस, नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़े ठीस। आखण जोर चुपै नह जोर, जोर ना मंगण देन ना जोर। जोर ना जीवन मरण नह जोर, जोर ना राजमाल मन सोर। जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुगती छुटै संसार। जिस हाथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए। राती रुती थिती वार, पवन पानी अग्नि पाताल। तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल। तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत। करमे करमे होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। तिथै सोहन पंच परवान, नदरी कर्म पवै नीसान। कच पकाई ओथै पाए, नानक गया जापै जाए। धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आखा हो कर्म। केते पवन पाणी वै संतर, केते कान महेश। केते बरमे घाट घड़िए रूप रंग के वेश। केतिया कर्म भूमि मेर, केते केते धूप देश। केते इंद चंद सूर, केते केते मंडल देश। केते सिद्ध बुद्ध नाथ, केते केते देवी वेश। केते देव दानव मुन, केते केते रतन समुंद। केतिया खाणी केतिया बाणी, केते पात निरिंद। केतिया सुरती सेवक, केते नानक अंत ना अंत। ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथै नाद विनोद कूड आनंद। शर्म खंड की बाणी रूप, तिथै घाड़त घड़िए बहुत अनूप। ताकिया गलां कथियां ना जाहे, जे को कहै पिछे पछुताए। तिथै घड़िए सुरत मत मान बुद्ध, तिथै घड़िए सुरां सिद्धां की सुध। कर्म खंड की बाणी जोर, तिथै होर ना कोई होर। तिथै जोद महाबल सूर, तिन में राम रहया भरपूर। तिथै सीतो सीता महिमा माहे, ताके रूप ना कथने जाहे। ना ओहे मरहै ना ठगे जाहे, जिनकै राम वसै मन माहे। तिथै भगत वसै केलो, करै आनंद
सच्चा मन सोए सच खंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल तिथै खंड मंडल वर भंड जे को कथा है ता अंत ना अंत तिथै लो लो आकार जीव जीव हुकम तिवै तिव कार वेखै विगसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जत पाहारा धीरज सुनियार अहरण मत वेद हथियार पाओ खला अगन तप ताओ भांडा पाओ अमृत तित टाल घड़िए

कृत है, करुणाकृत है, अकृताकृत है, धरणी कृत है, अमतेश्वर है, परमेश्वर है, अकृताकृत है, अमृतामृत है, अजबाकृत है, अमृतामृत है, नर नायक है, खालकायक है, विश्वम्ब्र है, करुणालय है, निरपनायक है, सर्वपायक है, भाव भंजन है, आर्य गंजन है, रे प्रतापन है, जप जापन है, अकलंकृत है, सर्वाकृत है, कर्ताकार है, हरता हर है, परमात्म है, सर्वात्म है, आत्मवास है, जस के जस है, भुजंग प्रयात छंद, नमो सूरज सूरजे, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो राज संग तम संसात रूपे, नमो परम तत्ंग अततंग स्वरूपे, नमो योग योगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने, नमो युद्ध युद्धे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो भोज भोजे, नमो पान पाने, नमो कलह कर्ता, नमो शांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विभूते, कलंकार रूपे अलंकार अलंके, नमो आस आसे, नमो बांक बंके, अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे, त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी अकामे, एक अश्री छंद, अजय अलय अपय अभय अभू अजू अनास आकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगा अटहा अनाथे प्रमाथे अजूनी अमोनी, न रागे न रंगे न रूपे न रेखे, अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे, कुजंग प्रयात छंद, नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे, अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे, नृकामंग बेभूते समस्तुल स्वरूपे, कुकर्मंग प्रणासी सुकर्मंग बेभूते, सदा सच्चिदानंद सत्रंग प्रणासी, करीमल कुनिंदा समस्तुल निवासी, अजायब बेभूते गजायब गनी में, हरियं करियं क्रीमल रही में, चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र पुगते, स्वयं भव शुभं सर्वदा सर्वजुगते, दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे, सदा अंग संगे अपंगं बेभूते, चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र पुगते, स्वयं भव शुभं सर्वदा सर्वजुगते, दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे, सदा अंग संगे अपंगं बेभूते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवें तुआ प्रसाद सवैये, श्रावक सुध समूह सिधान के, देख फिर घर जोग जति के, सूर सुरार्दन सुध सुधा देखो, संत समूह अनेक मति के, सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखियत प्राणपति के, श्री भगवान की पाए कृपा हूं ते, एक रति बिन एक रति के, माते मतंग जरे जर संग, अनूप उतंग सुरंग सुवारे, कोट तुरंग कुरंग से कूदत, पौन के गौन को जात निवारे, भारी पूजान के भूप भली बेद, न्यावत शीस न जात बिचारे, इते पहे तो कहां पहे भूपत, अंत को नागे ही पाए पधारे, जीत फिरे सब देश दिशान को, बांजत ढोल मृदंग नगारे, गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर, हिंसत ही हाय राज हजारे, भूत पवेख पवान के भूपत, कौन गन नहीं जात बिचारे, श्री पात श्री भगवान भजे बिना अंत कौ, अंत के तहम सिधारे, तीर्थ नान दया दम दान, सुसंजम नेम अनेक बसेख है, वेद पुराण कतेब कुरान, जमीन जमान सबान कपेख है, पौन आहार जति जात तार, सबाय सो विचार हजार क देख है, श्री भगवान भजे बिन भूपत, एक रति बिन एक न लेख है, सुध सिपाह दुरंत दुबाह, सुसाज सनाह दुर्जान दलेंगे, भारी गुमान परे मन में, कर पर्वत पंख हले ना हलेंगे, तोर अरीर मरूर मवासन, माते मतंगन मान मलेंगे, श्री पात श्री भगवान कृपा बेन, त्याग जहान निदान चलेंगे, वीर अपार बड़े बरियार, अब चार है सार की धार पशैया, तोरत देश मलिंद मवासन, माते गजान के मान मलैया, गड़े गड़ान को तोड़न हार, सो बात नहीं चक चार लवैया, साहेब श्री सबको सिर नायक, जाचक अनेक सो एक देवैया, दानव देव फनेंदन साचर, भूत पवेख पवान जपेंगे, जीव जीते जल में थल में, पल ही पल में, सब थाप तपेंगे,
उन प्रतापन बाढ़ जैत धुन पापन के बहु।

पुंज खपेंगे साध समूह परसान फिर जग सत्र सवय अवलूप चपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नरातप जौन त्रिलोक को राज करेंगे कोट स्नान गजाधिक दान अनेक सुअंबर साज बरेंगे ब्रह्म महेश्वर बिसन सची पत अंत फासे जम फास परेंगे जे नर श्री पत के प्रस है पाग ते नर फिर न देह तरेंगे कहा पयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो नहत फिरियो लिए साथ समुन्द्रन लोक गयो परलोक गवायो बास कियो बिख्यान सो बैठ कै ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साच कहो सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू लै पाहन पूज धरियो सिर काहू लै लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर अवाची दिशा मैं काहू पशा को शीस निवायो को बुतान को पूजत है पाश को मृतान को पूजन तायो कूर क्रिया उर्जियो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो को बुतान को पूजत है पाश को मृतान को पूजन तायो पूर क्रिया उर्जियो सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कब्यो बाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दय रक्षा पूरन होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबै तुम कावो आप हाथ दय मोहे बचावो सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दय करिए सब बैरन को आज संग्रिए पूरन होए हमारी आशा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें शाड कोई आवरना त्याऊ जो बार चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारिया है चुन चुन सत्र हमारे मारिया आप हाथ दय मुझे उबरिया मरण काल का त्रास निवरिया हु जो सदा हमारे पच्छा श्री असतो जिजु करे हो रक्षा राख ले हो मोहे राखन हारे साहिब संत सहाये प्यारे दीन बंध दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दास कंता काल पाए ब्रह्मा बाप तरा काल पाए शिवजु अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी सेव कियो वेद राज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दायत जक्षण उपजायो आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सुवारी सेवकन को सेव गुण सुख दियो सत्रन को पालमो बाद कियो घाट घाट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर असतूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने घाट घाट के पाठ पाठ की जाने जब उदकर्ख करा करतारा प्रजा तरत तब देहे अपारा जब अकर्ख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब तार है आप अपनी बूझ उचार है तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद आर आलम निरंकार निर्भकार निरलंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचारत भेदा जाको भेव ना पावत बेदा ताको कर पाहन अनुमानत महामूड काश भेद ना जानत महादेव कौ कहत सदा सेव निरंकार का चीनत नह भेव आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तो है तेती तुमरा लखा न जाए पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कही भूपा
अंडज जेरज सेतज कीनी ओत भुज खान बहुर राज दीनी। कहूं फूल राजा हुआ बैठा कहूं सिमट पयो संकर इकैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण कहता जे अस तो जे तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुखत हवै मरे पुरख जवन पग परे ते हारे तिनके तुम संकट सब टारे। जो काल को एक बार त्याय है ताके काल निकट न है आय है रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरै तत काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो ताके तब तनक मुँह हारे हो रिद सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह शुवै सके ना कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फांस ते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दोख ते रहा। खड़ग केत मैं शरण तिहारी आप हाथ दै लेहो उबारी सर्ब ठाउर मोह सहाई दुष्ट दोख ते लेहो बचाई। कृपा करी हम पर जगमाता ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता किल बिख सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को शय करता। श्री अस तुज जब पहे दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांशत फल पावे सोई दुख न तिस व्यापत कोई अड़िल। सुने गुंग जो जाहे सुरस न पावई सुने मूड चित लाए चतुरता आवई। दुख दर्द पाओ निकट ना तिन नर के रहै हो जो जाकी एक बार चौपाई को कहै। चौपाई संबत सत्रह सहस पण जय अर्ध सहस फुन तीन कह जय भाद्रव सुधी अष्टमी रविवारा तीरस तद्रव ग्रंथ सुधारा। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आनेओ। राम रहीम कुरान कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सबै बहु भेद कहे हम एक न जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहेओ सब तुहे बखान्यो। दोहरा सगल द्वार

पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संतापे उतरे सुने।

0: सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर्व विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फुरपान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुद आख्या लख करोड़ सच्चे सब दान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची साला सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ध्यान सच जो मर जमे सो कच निकच महला पहला
1: वड्डी वड्याई जा वड्डा नाओ वड्डी वड्याई जा सच ने आओ वड्डी वड्याई जाने चलथाओ वड्डी वड्याई जाने आला वड्डी वड्याई बुझे सब पाओ वड्डी वड्याई जा पुछ न दात वड्डी वड्याई जा आपे आप नानक कार न कथनी जाए कीता करना सरबर जाए महला दूजा
2: जग सच्चे की है कोठड़ी

दुख दारू सुख रोग पे आज आसुकताम ना होई। तू करता करना मैं ना ही दाहो करी ना होई। बलहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लख्या रहाओ। जात मह जोत जोत मह जाता कल कला भरपूर रहया। तू सच्चा साहब सिफत सवालियो जिनकी ती सो पार पिया। कहो नानक करते किया बाता जो

पिछले गुनाह बख्साई जियो, अब तू मार्ग पाए। हर की चरणी लाग रहा, विचहु आप गवाए। मेरे मन गुरमुख नाम हर त्याए, सदा हर चरणी लाग रहा, एक मन एक है पाए रहा। ना मैं जात ना पत है, ना मैं थे हो न थाओ, शब्द भेद भ्रम कटिया, गुर नाम दिया समझाए। इहो मन लालच करदा फिरे, लालच लागा जाए। धंधे कूड़ व्यापिया, जमपुर झोटा खाए। नानक सब किछ आपे आप है, दूजा नाही कोए। भगत खजाना बख्शियो, गुरमुखा सुख होए। मारू महला तीजा, सच रत्ते से टोल लहो, से विरले संसार। तिन मिलिया मुख उजला, जप नाम मुरार। बाबा साचा साहिब हृदय संभाल, सतगुरे अपना पुछ देख लहो, वखर पाल रहाओ।

पावह सच सोए। एक भगती सार न जाननी मनमुख भरम भुलाए, उन्हां विच आप वरतदा करना किछु न जाए। जिस नाल जोर न चलई खले कीचै अरदास, नानक गुरमुख नाम मन वसै ता सुन करे साबास। मारू महला तीजा, मारू ते शीतल करे मनूरह कंचन होए, सो साचा साला ही है तिस जेवड अवर न कोए। मेरे मानो अनदिन त्याए हर नाओ, सतगुर कै बचन अराध तू अनदिन गुण गाओ रहाओ। गुरमुख एको जानी है जा सतगुर दे बुझाए, सो सतगुर साला ही है जिदू

जम पुर बदे मारी है बहुती मिले सजाए। मेरा प्रभ वे परवाहु है ना तिस तिल ना तमाए। नानक तिस सरनाई भज पाओ आपे बख्श मिलाए। मारू महला चौथा घर दूजा इक ओंकार सतगुर प्रसाद। जप्यो नाम सुख जनक गुर बचनी हर हर सरण परे। दालद पंज सुदामे मिलो भगती पाए तरे। भगत वछल हर नाम कृतार्थ गुरमुख कृपा करे। मेरे मन नाम जपत उदरे ध्रुव प्रहलाद बिदर दासी सुत गुरमुख नाम तरे। रहाउ कलयुग नाम प्रधान पदार्थ भगत जना उदरे। नामा जय देव कबीर त्रिलोचन सब दोख गए चमरे।

सब तिनके दोख पर हरे, बेसुआ रवत अजामल उदरेओ, मुख बोले नारायण नर हरे, नाम जपत उग्र सैन गत पाई, तोड़ बंधन मुक्त करे, जन को आप अनुग्रह किया, हर अंगीकार करे, सेवक पैज रखे मेरा गोविंद, शरण परे उदरे, जन नानक हर कृपा तारी, पुर तरयो नाम हरे। मारू महला चौथा, सिद्ध समाद जप्यो लिवलाई, साधक मुन जपया, जति सती संतोखी त्याया, मुख

मन नाम जपत धरिया, धन्ना जट बालमीक बटवारा, गुरमुख पार पया रहाओ। सुर नर गण गंधर्वे जप्यो, रिख बपुरै हर गाया, शंकर ब्रह्मै देवी जप्यो, मुख हर हर नाम जपिया।

ते तीस त्यायो हर जपत्या अंत न पाया। वेद पुराण सिमृत हर जपया मुख पंडित हर गाया। नाम रसाल जिना मन वसया ते गुरमुख पार पया। अंत तरंगी नाम जिन जपया मैं गणत न कर सकया। गोविंद कृपा करे थाए पाए जो हर प्रभ मन पाया। गुरु

गुर सतगुर की शरणाए, हर जीव आप दयाल होए, जन नानक हर मेलाए। मारू महला चौथा, हौ पूंजी नाम दसाए दा, को दसे हर धन रास, हौ तिस विटहु खन खनिया, मैं मिले हर प्रभ पास। मैं अंतर प्रेम पिरम का, क्यों सज्जन मिले मिलास, मन प्यारिया मित्रा, मैं हर हर नाम धन रास। गुरपूरै नाम दृढ़ाया, हर तीरक

सुन बेनती जन नानक की अरदास। मारू महला चौथा। हर हर कथा सुनाए प्रभ गुरमत हर हृदय समाणी जप हर हर कथा विडभागिया हर उत्तम पद निर्वाणी गुरमुखा मन प्रतीत है गुरपूरै नाम समाणी मन मेरे मैं हर हर कथा मन पाणी हर हर कथा नित सदा कर गुरमुख अकथ कहानी रहाओ मैं मन तन खो

हर मेलो सुगड़ सुजानी, जन नानक शरणागति कर कृपा नाम समाणी। मारू महला चौथा, हर भाऊ लगा बैरागिया, वडभागी हर मन राख, मिल संगत सरदा उपजै, गुर शब्दी हर रस चाख, सब मंतन हर

हर हर नाम रस चाक गुरपूरै हर पाया हलत पलत पत राख रहाओ हर हर नाम त्याई है हर कीरत गुरमुख चाख तन धरती हर बीजी है विच संगत हर प्रभ राख अमृत हर हर नाम है गुरपूरै हर रस चाख मन मुख।

जन नानक गुरमत पाख, मारू महला चौथा घर पंजवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर हर भगत भरे भंडारा, गुरमुख राम करे निस्तारा, जिसनों कृपा करे मेरा स्वामी, सो हर के गुण गावे जियो, हर हर कृपा करे बनवाली, हर हृदय सदा

तेरा मन पावै जियो। नवे छिद्र सर्वहै अपवित्राहा, बोल हर नाम पवित्र सब किता। जे हर सुप्रसन्न हुवै मेरा स्वामी, हर सिमरत मल लह जावै जियो। माया मोह बिकम है भारी, क्यों तरिया दुत्तर संसारी। सतगुरु बोहित देह प्रभ साचा, जप हर हर पार लंघावै जियो।

जिन सेवक भगत सबे निस्तारी, दस अठ चार वेद सब पूछहु, जन नानक नाम छड़ाई जियो। मारू महला पंजवां, घर दूजा इको अंकार, सतगुर प्रसाद। डर पै धरत आकाश नखियत्रा,

गाय गुनी रहाव देह तार अर देवा डर पह सिद्ध साधिक डर मुया लख चौरासी मर मर जन्मे फिर जो नी जोया राजसत सातक तामस डर पह किते रूप पाया छल बपरी यह कौला डर पै अत डर पै धर्म राया सगल समग्री डर है व्यापी बिन डर करन है हारा कहो नानक भगतन का संगी भगत सो है दरबारा मारू महला पंजवां।

दारे, मेरे ठाकुर केते अगणत उदारे, मोहे दीन अल्प मत निर्गुण, परयो शरण द्वारे रहाओ। बाल्मीक सुपचारो तरयो, बदिक तरे बिचारे, एक निमक मन माहे आराध्यो, गजपत पार उतारे। कीनी रखिया भगत प्रहलाद, हर नाखस नखै बिदारे, बिदरदासी सुत भयो पुनीता, सगले कुल उजारे, कवन पराध बता।

रहाव, पुत्र कलत्र ग्रह देख पसारा, इस ही मह उर्जाहे, माया मद चाख भय उदमाते, हर हर कबहु न गाए, एह बिद खोजी बहु प्रकारा, बिन संतन नहीं पाए, तुम दातार वटे प्रभ सुमरत, मांगन कौ दान आए।

प्रीत रहाओ। जैसी आज्ञा कीनी ठाकुर, तिसते मुख नहीं मोरियो। सहज आनंद रखियो गृह भीतर, उठ उआहू कौ दौरियो। आज्ञा में भूख सोई कर सूखा, सोग हरख नहीं जानियो। जो जो हुक्म भयो साहिब का, सो माथे ले मानियो। भयो कृपाल ठाकुर सेवक कौ, सवरे हलत पलाता। धन सेवक सफल हुआया, जिन नानक खसम पछाता। मारू महला पंजवां।

बाहुर अटकाव सरे, भयो प्रसाद कृपा नित ठाकुर, संत संग पत पाई, कहो नानक त्रै गुण भ्रम छूटा, जो प्रभ भय सहाई, मारू महला पंजवा। अंतर जामी सब विद जाने, तिस्ते कहा दुलारियो, हस्त पाव चरे खिन पीतर, अगन संग ले जा रे हो, मूड़े तै मन ते राम बिसारियो, लून खाए करे हराम खोरी, पेखत नैन बिदारियो रहाओ। असाध रोग उपजियो तन पीतर, टरत न काहू टारियो, प्रभ बिसरत महा दुख पायो, इहो नानक तत विचारियो, मारू महला पंजवा, चरण

आद मद अंत है सू। संतन की ओट आपे आप रहाउ, जाके वस है सगल संसार। आपे आप निरंकार, नानक कहू साचा सोए। सुख पाया फिर दुख न होए, मारू महला पंजवा। घर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। प्राण सुख दाता जी सुख दाता, तुम काहे बिसारियो अज्ञानत। उच्चा मद चाक हुए तुम बावर, दुलभ जन्म अकारत। रे नर ऐसी करह इयानत, ताज सारंग तहर भ्रम तू भूला। वोहे लपट्यो दासी संग सानत रहाओ। धरनी धर त्याग नीच कुल सेव है, हाओ हो करत बिहावत। फोकट कर्म करे अज्ञानी, मन मुख अंध कहावत। सत होता असत कर मानिया, जो बिन सत सो निह चल जानत। पर की को अपनी कर पकरी, ऐसे भूल भुलानत। खत्री ब्राह्मण सूद वैस, सब एकै नाम तरानत। गुरु नानक उपदेश कहत है, जो सुने सुपार परानत। मारू महला पंजवा, गुप्त करता संग सो प्रभ डहकावे मन खाए। विसार हर जीव बिकै भुगह, तपत थम गल लाए। रे नर काए पर गृह जाए, कुचल कठोर काम गर्दब। तुम नहीं सुनियो धर्म राय रहाओ। विकार पत्र गलह वादे, निंद पोट सिराए। महासागर समुद लंघना, पार न पर ना जाए। काम क्रोध लोभ मोह व्याप्यो, नेत्र रखे फिराए। शीश उठावन न कबहू मिलई। महा

स्वभावत जैसे बैसंतर अल्पत सदा निर्मलाए। जिस कर्म खुलिया तिस लहया पड़दा जिन गुर पह मन्या सुभाए। गुर

रहाओ। खोए खहड़ा भरम मन का सतगुर सरणी जाए, कर्म जिस पौ तुरहों लिखिया सोई कार कमाए।

कब हूं जाए। पाया अमूल पदार्थ छोड़ न कतहु जाए, कहो नानक सुख पाया तृप्त रहे आघाई। मारू महल्ला पंजवां।

तपत कड़ाहा बुझ गया। गोर शीतल नाम दियो रहाओ। जब ते साधु संग भया तो छोड़ गए निगहार निगहार, जिसकी अटक तिस ते छुट्टी तो कहा करे कोटवार।

ऊंच मूंच अपार स्वामी अगम दरबारा नम वड्याई सोभा नानक खसम प्यारा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत्कारयोग गुरु रूप साध संग जी आप जी वडभागी हो जो गुरु कृपा सदका गुरु चरणा विच बैठ के घरां विच बैठ के अमृत बाणी दे श्री सहज पाठ नाल जुड़ रहे सी। सतगुरु जी कृपा करन सबना दी हाजरी दर प्रवान कर लैन, दरों करों चढ़दी कला बख्शिश करके निवाजन, बाणी पढ़दियां होईयां फुल्लां दी खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

तंदूर सुहाई सर सहिरी लै पहर जा संग लाई पाचो आर जा सुरमानंद पास करे आए चंद्र बिंब मंगलन सुहाए

कुंतल यो रामा कमल कुसुम चंपक के नामा गौरा उकांदरा कल्याणा अष्टपुत्र दीपक के जाना सांबिल श्री राघवे गावे पांचो संग बरंग लावे बैरारी करनाटी तरी गवरी गावे सावरी तह पाछे सिंधवी अलापी श्री राग सिंह पाचो थापी सालू सारग सागरा और गोंड गंभीर अष्टपुत्र श्री राग के गोंड कुंभ हमीर कष्टम मेघ राग वह गावे है पांचों संग बरंग लावे है सोरठ गोंड मलारी धुनी पुन गावे है आसा गुन गुनी

सुनिहार रात्रियाकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु। श्री वाहिगुरु साहिब जीओ।

पीसाचु। सोचै सोच न होवई जे सोची लख वार, चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार। भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना बुरिया भार, सहस स्याणपा लख होहे,

एक बेनती कर दें आप जी दे चरणा च। कलगी वाले धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जिथे देख देखते धनी हन, सरबंस दानी हन, खालसा पंथ के सृजन हार हन, उथे ही धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह बहुत वड्डे संगीतकार भी हैं। सत संत बोलो श्री दास ने आरंभता की सी धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी के बचना तो, बिन करतार न किरतम मानो, राग कल्याण पातशाही दसवें। जिथे गुरु ग्रंथ साहिब दे विच 31 राग सिकल हन, 31 राग ही मिश्रित हन, 62 राग, एडा वड्डा खजाना। उथे ही धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने 177 राग गाए ने, 177। सत संगत बोलो श्री। इदी परचोल 1990 दे शुरू हुई सी और इन्हों 2 साल लगे सन लुधियाने विच, दास उदे विच शामिल सी। ये बहुत वड्डी देन है धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी, बहुत वड्डी देन है सत संगत। जे असी उस देन नू संभाल सकीए शायद साडे पुरब मनाए सफल हो जान, इत्थे आउणा सफल हो जाए। जिस मार्ग ते जिस रस्ते ते सतगुरु धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने सानू तोरना चाहिया, उस रस्ते ते किते असी भी तुर पईए ते शायद इस जीवन विच इस लाइफ विच ऐसी क्रांति आ जाए। क्रांति ये उही क्रांति ते सी, सतगुरु बेहर करन बख्शिश करन। सरबत दा हार्दिक तौर ते धन्नवाद।